हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी

0: ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:05 हो रहे हैं। समय है आज के विचार का। ईश्वर क्या है, ये विषय है आज के विचार का। वाचक स्वर है श्री गोपाल आचार्य का।
2: ईश्वर क्या है, उसका रूप कैसा है भी या नहीं, उसकी भक्ति कैसे की जाए, उसे प्रसन्न कैसे किया जाए, आदि आदि प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य के विचारों को अनेक तरह से आंदोलित करते रहे हैं। श्री वेद व्यास ने

इन प्रश्नों का एक सरल और स्वाभाविक उत्तर अपने ग्रंथ महाभारत में दिया है। उसके गीता के संबंध में उन्होंने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या, यानी गीता एक उत्तम ग्रंथ है और उसमें वर्णित आदेशों का जीवन में पालन करना चाहिए। इसी ग्रंथ गीता में उन्होंने ईश्वर के स्वरूप की सांगोपांग व्याख्या की है। कैसा भक्त ईश्वर को सर्वप्रिय है और उसकी भक्ति

0: रूप में बात इस तरह उभर कर सामने आती है कि अर्जुन एक साधारण बुद्धि और ज्ञान वाले व्यक्ति का प्रतीक है और श्री कृष्ण एक ऐसे पुरुष अथवा व्यक्तित्व का साकार रूप जो अपने विवेक और ज्ञान के कारण सर्वसमर्थ है। संशयुक्त एक साधारण व्यक्ति की तरह अर्जुन ईश्वर का वास्तविक रूप देखने की इच्छा प्रकट करता है। अपने मित्र श्री कृष्ण की अनन्य शक्ति और विवेक में उसे पूर्ण विश्वास है। श्री कृष्ण उसे ईश्वर के रूप में विश्व के विराट रूप का दर्शन करवाते हैं। पृथ्वी, पहाड़, नदी, नाले, सागर, आकाश, पाताल, जीव, अजीव, मनुष्य आदि आदि सभी के रूपों की झलकी उसे उसमें दिखाई देती है, परंतु उसे एहसास होता है कि कोई भी रूप स्थायी नहीं है। सारा दृश्य परिवर्तनशील है। जन्म, जीवन, मृत्यु के निश्चित अथवा शाश्वत नियमों से कोई रूप स्वतंत्र नहीं है, परे नहीं है। प्रकृति में उत्पत्ति नाश की सतत प्रक्रिया से वह विचलित हो उठता है। उसकी रहस्यमयता उसके लिए असीम है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि मित्र, यही ईश्वर का वास्तविक रूप है। इसी विराट रूप में वह प्रकट है। इसी में हमारा अस्तित्व है और हमारे में उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए यदि भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो उसके विराट रूप की भक्ति करो, मानव की सेवा करो। वही उसकी सर्वमान्य और सर्वोपरि भक्ति होगी। कारण मानव उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है और सबसे अधिक समीप भी है। और इस तरह मानव सेवा का आदर्श उपस्थित करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर की इस तरह की भक्ति में प्रवृत्त होता है, वही योगियों में सबसे उत्तम योगी है और भक्तों में सबसे उत्तम भक्त है।
1: आप सुन रहे थे आज का विचार। आज के विचार में विषय था ईश्वर क्या है। वाचक स्वर था श्री गोपाल आचार्य का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:10 हो रहे हैं। समय हो चला है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं अनुपमा देशपांडे और नितिन मुकेश के स्वरों में गाए इस गणेश भजन के साथ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में नितिन मुकेश अनुपमा देश पांडे और साथियों को आपने सुना। लीजिए सुनिए अगला और अंतिम भजन हरिओम सरन और साथियों के साथ।

हरिओम सरन और साथियों के गाए इस भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातः काल के 6:30 बज चुके हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कार्यक्रम में सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 163 से दोहा संख्या 165 की अंतिम चौपाई तक का सास्वर पाठ।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते।

तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में किसान श्रोताओं के लिए लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम खेती की बातें। ग्वार उगाएं आमदनी बढ़ाएं विषय पर जानकारी देंगे श्री अनिल सिंह। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक भजन का। सुबह 7 बजे होगा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात। स्वच्छ भारत अभियान, योग अभ्यास के माध्यम से जोड़ों को स्वस्थ बनाना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के विश्व दिवस जैसे विषयों पर होगी चर्चाएं। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:30 बजे। तत्पश्चात आप फिल्मी गीतों का आनंद हमारी पहली सभा में उठा सकेंगे सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। दिन में 12:40 का समय रहेगा फिल्म संगीत का और दोपहर 2:30 बजे भी होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सुबह 8:30 बजे लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में होगा कविता पाठ, कवि रहेंगे श्री शशांक शेखर जोशी, प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। सुबह 9:15 बजे आप सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे और 9:10 का समय रहेगा कार्यक्रम लोक संगीत का। सुबह 9:30 बजे लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम उमंग NCERT। सुबह 11:00 बजे आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, धारावाहिक संख्या रहेगी 16। सुबह 11:30 बजे आप फिल्म संगीत में भूले बिसरे गीतों का आनंद ले सकेंगे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1:05 पर चर्चा रहेगी जल संचयन, वर्षा जल को सहेजने के लिए घरेलू स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग, साथ ही साथ विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर भी होगी चर्चा। किचन गार्डनिंग, घर पर आसानी से उगने वाली सब्जियां भी आपसे कार्यक्रम में विवेचित की जाएंगी। हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय 5:05 रहेगा। आज की बात होगी दैनिक योग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, साथ ही साथ मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के विश्व दिवस, नए भारत का निर्माण मोदी सरकार के 12 वर्ष, पर्यटन स्थल उदयपुर राजस्थान के लोक नाट्य जैसे विषयों पर भी युवा साथियों से की जाएंगी चर्चाएं। 6:05 पर आप फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में युगल गीतों का आनंद ले सकेंगे। 7:00 बजे आकाशवाणी दिल्ली से ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड के मध्य हेडिंगले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे।

0: ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:45 हो रहे हैं। किसान श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। ग्वार उगाएं आमदनी बढ़ाए विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री अनिल सिंह।
1: किसान भाई बहना राम राम। किसान भाई बहना आप देखा कभी आपने जो की खेती बाड़ी है वे में जो को जून रो महीनो चलन लाग रही है तो वे में आपा आगामी जो की फसल रो बीजान है वे खातर खेती तैयारी करने लाग रहे हैं और वह सरु आपा की है कि आपने खेत में कौन सी फसल बीजान करा वह बारे में भी चिंतित है कभी आपा कौन सी फसल रो बीजान कर ज्यादा मुनाफा ले जाओ तो वह सरु देखो आज आप बात करा ग्वार री फसल रे। तो ग्वार री जो की फसल है किसान भाई बहना या व्यापारिक महत्व रखे और व्यापारिक महत्व होने से फसल रो भाव है नी ज्यादा रवई है वह सागे सागे कदी एरी ज्यादा मांग हो जाए बाजार में तो एरो जो को भाव है वो आसमान छूण लाग जो है। तो आपा ग्वार री जकी फसल है वह रो बीजान कर आपा ऐसू ज्यादा उत्पादन ले सका और ग्वार री जकी फसल है या बिरानी क्षेत्र में आपा आसानी से कर सका हाँ। ग्वार री फसल है जकी सूखा प्रतिरोधी हो है और एरी जकी जड़ा है वह गहरी जावे और पानी सोखण री क्षमता ज्यादा हो है तो ऐसा रुके है फसल ना आपा कम वर्षा क्षेत्र में भी आसानी से उत्पादन ले सका और अपने कने जो सिंचाई रा साधन है तो भी आपा ग्वार री फसल रो उत्पादन ले सका और ध्यान देवा कभी ग्वार री जकी फसल है जका ग्वार सु ग्वार गम अनेक उत्पाद तैयार करे जावे आप ग्वार री फसल सु ग्वार गम रो उत्पादन करके वैसो अनेक उत्पाद बाजार में उतार कहा और ग्वार री फसल री ज्यादा पैदावार लेने खातर आपने सबसे पहला किया कि ग्वार फसल री खेत री तैयारी किया करनी है या जाननी बहुत ही जरूरी है। ग्वार रिज की खेती बाड़ी करा तो आप देख लेवा भी खेत रिज की जमीन है वह तैयार करा तो गर्मी रिज के मौसम में एक गहरी जुताई करनी नहीं भूला और गहरी जुताई करने के बाद में आप प्रति हेक्टर जो की 20-25 गाड़ी है वह गोबर री खाद

0: डाला में सुखी है कि आपने जो को ग्वार रो बीजान करा वे में अंकुरण अच्छो हुआ है और प्रति हेक्टर पैदावार भी आपने ज्यादा बढ़े है और मेरे बाद में आप जो को मिट्टी पलटना रो हल या डिस्क है रसू जुताई करनी चाहिए और जुताई करने के बाद में आपने खेत ने समतल कर खेत ने तैयार करना चाहिए ताकि जबकि खेत में जल री निकासी है वह आसानी से हो सके और ग्वार री फसल में पानी रो रुक नहीं आवे। किसान भाई बहना ग्वार री बीजान करण खातर खेत री मिट्टी री बात करा तो ग्वार री फसल खातर जबकि दोमट मिट्टी हो है वह सबसे बढ़िया होया करे और दोमट मिट्टी रो जो को पीएच मान है वो 7.8-8.5 तय हो है तो अपना ग्वार री फसल रो में बीजान कर सका हाँ। और ग्वार जिकी फसल है वह कम यानी मध्यम वर्षा हुआ है वह क्षेत्र में भी बरानी फसल अपना आसानी से ले सका और ग्वार री फसल री एक बात और है किसान भाई बना जो की लवणीय और क्षारीय मिट्टी है वह में इन्हें नहीं उगाना चाहिए। ग्वार री बीजान री बात करा तो किसान भाई बना बीजान रो जो सही टाइम है वो अबार जो की जून रो महीनो चल रहे है अंतिम सप्ताह और जुलाई रो जो पहलो पखवाड़ो है एमें बीजान सबसे बढ़िया टाइम होया करे। और एरी ग्वारी जी की उन्नत किस्म है उनारी बात करा तो RGC 936, RGC 1002, RGC 1003, RGC 1066, HG 365, GC 1, RGC 1017, HGC 563, RGM 112, RGC 1038 और RGC 936 जकी सबसे उन्नत किस्म पाई जावे और आप अपने जको क्षेत्र है वह अनुसार एरो चुनाव करा। और किसान भाई बहना ग्वार री फसल ने आप रोग से बचाने खातर रोग नियंत्रण करने खातर बीजाण से पहला बीजोपचार करनो नहीं भूला। और बुआई रे तरीके री बात करा किसान भाई बहना तो ग्वार री जकी बुआई है वह कतार से कतार में करा और जकी दूरी है कतार से कतार की वह 30 सेंटीमीटर रखा और पौधे से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा। किसान भाई बहना प्रति हेक्टर रे हिसाब से 15-20 किलोग्राम बीज अपने डालना चाहिए। और किसान भाई बहना ग्वार री फसल में उर्वरक री बात करा तो शुष्क और उर्ध शुष्क क्षेत्र है बटा अपने प्रति हेक्टर जका नत्रजन है वो 20 किलोग्राम और फॉस्फोरस है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर डालना चाहिए। ग्वार री फसल में निराई गुड़ाई री बात करा किसान भाई बहना तो आप टाइम सर जो की निराई गुडाई है फसल में करना नहीं भूला। और किसान भाई बहना जो की ग्वार री फसल है मैं मोटर रोग में बात करा तो जो कीट लग गया तेला जैसी सफेद मक्खी चेपो एर नियंत्रण खातर आपने मिथाइल डिमेटोन 25 EC 250 मिलीलीटर प्रति बीघा रे हिसाब छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाई बहना अपना करने जो सिंचाई का साधन है तो आप ग्वार री फसल में जो की सिंचाई है वह अगस्त महीना रे अंतिम सप्ताह रे मई या फिर सितम्बर महीना रे शुरू रे मई अपने सिंचाई करनी चाहिए। और ग्वार री जो की फसल है वह नवंबर में पककर तैयार हो जाए और मोटे तौर पर अपन बात करा तो जो की ग्वार री फसल है प्रति हेक्टर 10-15 क्विंटल री पैदावार आप आसानी से ले सका। तो किसान भाई बहना आप ग्वार री फसल रो बीजान करा वह ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले।
1: किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम था खेती की बातें। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातःकाल के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शेर मोहम्मद की आवाज़ में लोक भजन।

0: आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडादेशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमंत्री श्रीमोदी 35वर्षस्य दूरदृष्ट्यांतर्गतं भारत यूके संबंधानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सहापि मिलितवान्, तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायी शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रियविधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्त्वम् अधोरेखितम्। केन्यादेशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षा

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कोई भी अभियान, कोई भी मूवमेंट तब तक सफल नहीं होता जब तक उसकी प्रतिभागी उसमें बढ़ चढ़कर अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ भाग नहीं लेते। जी हाँ, जैसे अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो ये भी अकेली सरकारी कोशिश नहीं है, अकेला सरकारी प्रयास नहीं है। जब तक कि भारत का हर व्यक्ति, हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता कि हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना है, स्वच्छ रखना है, और अपने इस कर्तव्य का भरपूर पालन नहीं करता, तब तक अकेली सरकार के भरोसे अगर हम ये उम्मीद करें, ये आशा करें कि भारत, जैसे कि हम पश्चिमी

बच्चों को देखते हैं साफ सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करना यकीनन बहुत कठिन है श्रोताओं। तो हम सुनिश्चित करें कि अपना हिस्सा हम इस अभियान में ज़रूर से डालें, ना सिर्फ अपने घर को साफ रखें बल्कि अपने आसपास, अपने पास पड़ोस में भी स्वच्छता का ख्याल रखें। सार्वजनिक नालियों में हम अक्सर देखा करते हैं कूड़ा करकट, खासतौर से प्लास्टिक का जो कचरा है वो होता है, और उस वजह से वो नालियाँ बंद रहती हैं और स्वच्छता में बड़ा व्यवधान पैदा होता है। तो एक छोटा सा प्रयास ही हम करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, यथासंभव यही कोशिश करें कि कागज़ या कपड़े के बने हुए बैग्स या थैलों का इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर हम छोटी छोटी कोशिश करते रहेंगे तो यकीनन हमारे स्वच्छता अभियान को ना सिर्फ सहयोग मिलेगा बल्कि सफलता की ओर अग्रसर भी होगा। जब साफ सुथरा भारत होगा तो इस साफ सुथरी फिजा में सांस लेने का आनंद ही दूसरा होगा। सुबह स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, और धीरे धीरे होने वाली ये सुबह जो निर्मल हो, साफ है, स्वच्छ है, हमें ना सिर्फ ऊर्जा से भरती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी भरपूर करती है। तो चलिए प्रण ने कि स्वच्छ भारत अभियान में हम अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे, और कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, अगर हम हमारी जिम्मेदारियां समझेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। और अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं अपने प्रति, और उसमें भी सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारी अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी है। अगर हम सजग हैं और ये बात जानते हैं कि जो हम आज बो रहे हैं वही हमें आने वाले समय में काटना है, यानी अगर हम आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं तो आने वाली उम्र, बढ़ती उम्र हमें परेशान नहीं करेगी, हमें थकाएगी नहीं, तो हम यकीनन अपने प्रति अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, योग के ज़रिए, योग अभ्यास के माध्यम से हम अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि योग का महत्व जीवन में कितना अधिक है। ये ना सिर्फ हमारे शरीर को स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण लाभ देता है, बल्कि योग हमें एक विशेष किस्म का लाभ और फ़ायदा प्रदान करता है जो हमें अन्य किसी माध्यम से नहीं प्राप्त होता, और वो है लचीलापन। जी हाँ श्रोताओं, योग ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर के हर एक जोड़ को लचीला बना सकते हैं। योग के ज़रिए हम अपने शरीर को अधिकतम मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफल भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम योग के प्रति अभ्यस्त होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ेगा और हमारे शरीर के जोड़ स्वस्थ रहेंगे। और अगर जोड़ स्वस्थ रहेंगे तो बढ़ती उम्र हमें थकाएगी नहीं। हम सभी जानते हैं योग एक प्राचीन अभ्यास है जो ना सिर्फ शरीर के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच में भी संतुलन बनाने का काम करता है। अगर रोज़ प्रयास किया जाए तो हमारे

शारीरिक क्षमता बढ़ती है, हमें मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। योग से प्राप्त होने वाला लचीलापन ना सिर्फ लचीलापन है बल्कि ये शक्ति का शरीर में असीमित संचार है। जी हाँ श्रोताओं, ये संचार शक्ति का सिर्फ हमारे शरीर के जोड़ों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे आंतरिक अंग, जिनके लिए स्वाभाविक तौर पर कोई बाह्य एक्सरसाइज या व्यायाम हमें नज़र नहीं आता, योग के माध्यम से हम उन्हें भी मजबूत बना सकते हैं। ख़ास करके अगर हम हृदय की यानी दिल की बात करें, योग के ज़रिए हम रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और हृदय गति को स्थिर करने का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो श्रोताओं, योग के महत्व को समझें और इसे अधिक से अधिक अपने जीवन में अपनाएं ताकि ये योग अभ्यास हमें स्वस्थ रखे, हमारे जोड़ों को मजबूत रखे और हमें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य हानि से बचाए रखे। तो योग करें और सुबह सुबह के संगीत का आनंद योग के साथ लें, दोनों मिलकर यकीनन हमारे स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुँचाएंगे।

श्रोताओं, हम आज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी की, फिर चाहे वो देश की स्वस्थता के प्रति हो, देश की साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति हो, या फिर स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति। इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है श्रोताओं, जो जुड़ी हुई है पर्यावरण से। जी हाँ, हर साल आज ही के दिन यानी 17 जून को पूरा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के विश्व दिवस को मनाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य श्रोताओं ये है कि तेजी से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में वृक्ष काटे जा रहे हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं, मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है और सूखा निरंतर बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण और सूखा दोनों ही वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं, क्योंकि ये दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त कार्रवाई की ज़रूरत है। ख़ासतौर से अफ्रीका जैसे देश में, जहाँ निरंतर मरुस्थल विस्तार और सूखा बढ़ रहा है। विश्व के एक तिहाई से अधिक भूभाग को कवर करने वाले शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक दोहन और अनुचित भूमि उपयोग के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं श्रोताओं। इसलिए मरुस्थलीकरण शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण है। ये मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तनों की वजह से होता है श्रोताओं, और विश्व के सबसे गरीब लोगों को प्रभावित करता है। हम रोज़मर्रा में जो भी खरीदारी करते हैं, चाहे वो भोजन है, पेय पदार्थ हैं, वस्त्र हैं, और यात्रा के तरीकों का जो भी हम फैसला लेते हैं, वो सभी भूमिगत संसाधनों पर निर्भर करता है श्रोताओं। और इनसे जुड़ा है वो तबका जो जीवन के लिए हर मकाम पर संघर्षरत है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने अपने स्तर पर और सामूहिक स्तर पर इस बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण को रोकने की कोशिश करें। यथासंभव हमारे प्रयास सूखे को रोकने में भी कारगर होंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वृक्षारोपण करें, घर में पौधे लगाएं। हमारी युवा पीढ़ी और बाल अवस्था में जो पीढ़ी है, जो नई बनने वाली पीढ़ी है, जो बड़ी हो रही है, उन्हें पौधों का महत्व समझाएं, उन्हें बताएं कि किस तरह से एक पौधा जब बढ़ता है तो ना सिर्फ वो पौधा बढ़ता है, बल्कि उसके साथ साथ खुशियां बढ़ती हैं, सुख बढ़ते हैं, समृद्धि बढ़ती है। तो जब हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे इस बात को जानेंगे, महसूस करेंगे, तो निश्चित ही वो अपने भविष्य को स्वयं संरक्षित कर सकेंगे, सुरक्षित कर सकेंगे। तो पेड़ लगाना, पौधे लगाना, इसको आदत में अपनाएं और अधिक से अधिक इस आदत को प्रोत्साहित करें और मिलजुल कर इस प्रयास में भाग लें, ताकि विश्व में तेज़ी से बढ़ते इस मरुस्थल विस्तार को हम रोकने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। ये कोशिश दरअसल सिर्फ हमारे काम नहीं आएगी, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के काम भी आएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो दूसरों के लिए जिए। और इसी तरह के प्रयास हो सकता है एक बहुत बड़े स्तर पर हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे आने वाली नस्लों को मदद कर सकें, उनके काम आ सकें। चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, हम ये इरादा करें, ये नियत करें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, चाहे फिर वो जिम्मेदारियां हमारे देश के प्रति हों, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति हों, या फिर पूरे विश्व के प्रति। अगर हमें जिम्मेदारियों का भान रहेगा तभी हम जवाबदेह बन सकेंगे, और जवाबदेह बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि हम कितने मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो इसी इरादे, इसी नियत के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दे आ गया, आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए मनहर की आवाज़ में। निदा फाजली हैं गीतकार, संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है धनवान और गीत को बोल दिए हैं साहिल लुधियानवी ने। हृदयनाथ मंगेशकर का है संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अगला गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खयाम और फिल्म है कभी कभी।

ये आवाजें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम था सिलसिला। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, शिवहरी का था संगीत। फिल्मी गीतों के सफर का आखिरी गीत लीजिए सुनिए। संगीतकार एक बार फिर से हैं शिवहरी, गीतकार हैं आनंद बख्शी, आवाजें लता मंगेशकर और बाबला मेहता की हैं। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: फिल्म चांदनी के इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।
1: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है।

0: उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण

को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ

0: संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात।

0: सोमवार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है, क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई, जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स ऑन ऑल नेशंस टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ग्लोबल मैरिटाइम रूट्स एंड प्रोटेक्ट सीफेयरर्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड थ्रेट्स। Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions

0: informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied, and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem." The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, समय है सौरभ का। कार्यक्रम सौरभ में आज सुनिए कविता पाठ। कवि हैं श्री शशांक शेखर जोशी। प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। संयोजनकर्ता है श्री अमित सिंह।
3: मेरी कविता ऑफिस। ऑफिस एक टेबल है जिस पर रखे हैं कुछ कागज, कुछ चाय के निशान और थोड़ी सी थकान। यहाँ घड़ी तेज चलती है पर लंच ब्रेक हमेशा धीरे धीरे आता है, जैसे बचपन का हमारा कोई संडे। एक कुर्सी है जो हर दिन किसी और के सपने का भार उठाती है, फिर भी कभी चरमराती नहीं, बस हल्के में मुस्कुरा देती है। दोस्तों, ऑफिस घर नहीं होता, पर वहां भी कभी कभी घर जैसी चुप्पी मिल जाती है। अगली कविता डॉक्टर। डॉक्टर की लिखावट पढ़ी नहीं जा सकती, जैसा वह बीमारी से ज्यादा दुआ लिखता हो। वो मुस्कुराकर कहता है कुछ नहीं हुआ, और उसी वाक्य में आधा इलाज छिपा होता है। कभी कभी वह चुप रहता है, जैसे किसी चिंता उसके स्टेथोस्कोप से होकर दिल तक पहुंच रही हो। डॉक्टर भगवान नहीं होता, पर वो उस खिड़की की तरह है जिससे डरते हुए भी हम हमेशा रोशनी की तरफ देखते हैं। ग्राहक। ग्राहक दुकान में आता है जैसे किसी कविता की पहली पंक्ति, जिससे तय करना होता है कि अंत कैसा होगा। वो पूछता है थोड़ा सस्ता कर देंगे, और मैं सोचता हूं कि हर सौदा दरअसल एक दोस्ती की शुरुआत हो सकता है। कभी वो लौट जाता है बिना खरीदे, पर उसकी निगाह मेरी दुकान पर छूट जाती है जैसे कोई अधूरी लाइन। ग्राहक भगवान नहीं होता, पर कभी कभी वो एक ऐसा अजनबी होता है जो हमारे दिन को थोड़ा बेहतर बना जाता है। अगली कविता रेत। रेत को मुट्ठी में नहीं रख सकते, जैसे यादों को या वक्त को या एक बीती हुई दोपहर को। वो हर चीज में भर जाती है, जूते, बाल, जेब और कभी कभी खामोशी में भी। रेत ने कभी कोई शिकायत नहीं की कि उस पर चलते हैं लोग, ऊंट, धूप और समय, फिर भी वो नरम बनी रहती है। रेत सब कुछ ढक लेती है, पर खुद को कभी नहीं ढकती, जैसे एक कवि जो सबके लिए लिखता है पर खुद के लिए नहीं। अगली कविता मौन। मौन कोई सजा नहीं, वो एक भाषा है जिसमें दिल अपने ही शब्दों का अनुवाद करता है। कभी वो तकरार के बाद आता है तो छुपता है, और कभी प्रेम के बाद आता है तो बहता है। मौन में कुछ टूटता नहीं है, बस कुछ बदलता है।

जैसे गर्म रोटी धीरे धीरे ठंडी होकर भी स्वाद नहीं छोड़ती। मौन वो कुर्सी है जो कमरे में शायद सबसे पुरानी है पर हर बार सबसे नया सहारा देती है। अगली कविता, सूरज। सूरज हर सुबह आता है जैसे कोई पुराना दोस्त जो हर बार नया उपहार लाता है, उजाला। कभी वो ज्यादा चमकता है तो लोग कहते हैं गर्मी है, पर कोई नहीं कहता कि उसके बिना कुछ भी पकेगा नहीं। सूरज कभी देर नहीं करता, जैसे एक ईमानदार मजदूर जो छुट्टी नहीं लेता पर तनख्वाह भी नहीं मांगता। सूरज उगता है और हम उसे देखकर खुद से एक वादा करते हैं कि हम भी फिर से उठेंगे। अगली कविता, चांद। चांद हर रात आता है जैसे कोई प्रेम पत्र जो कभी पोस्ट ही नहीं किया गया, पर फिर भी हर बार खुलता है। कभी वो आधा होता है फिर भी पूरा दिखता है, जैसे किसी का अधूरा प्रेम जिसमें सब कुछ होता है सिवाय शिकायतों के। चांद को कोई नहीं छूता फिर भी वो सबसे ज्यादा छुआ जाता है, कवियों द्वारा, प्रेमियों द्वारा, बच्चों द्वारा। कभी कभी लगता है चांद अकेला है पर वो कहता है मेरी चमक ही तुमसे है। अगली कविता, रास्ता। रास्ता कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है। हम ही होते हैं जो बदलते हैं मंजिल की तरह। कभी वो धूप से जलता है, कभी बारिश से भीगता है, पर हर बार हमारे कदमों को पहचानता है। एक बार मैं रास्ते से भटक गया तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा यहीं हूं। रास्ता लंबा हो या छोटा, अगर साथ चलने वाला हो तो लगता है जैसे मंजिल हमारे ही कदमों में है। अगली कविता है, तारे। तारे गिरते नहीं, बस कहीं खो जाते हैं, जैसे पुराने दोस्त जिनके नंबर अब शायद नहीं मिलते। आकाश में हर रात कोई कहानी टिमटिमाती है जिसे हम ऊपर देखते हैं, पर असल में वो भीतर जल रही होती है। एक तारा टूटता है और हम इच्छा मांग लेते हैं, जैसे कोई दुख झिलमिलाकर प्रेम में बदल गया हो। तारे गिनना आसान नहीं, पर किसी की आंखों में अगर तारे दिख जाएं तो समझ लो कि आज की रात बहुत सुंदर है। अगली कविता, सुबह। सुबह खिड़की से नहीं आती, आंखों से आती है, जब नींद उम्मीद के साथ टकरा जाती है। चाय की भाप में कल का थका हुआ दिन घुलता है और नई योजना टूटी हुई चम्मच से हिलाई जाती है। पक्षियों की आवाज कभी अलार्म से तेज नहीं होती, पर उसका संगीत ज्यादा सच्चा लगता है। सुबह हमेशा कहती है, चलो फिर से शुरू करें, जैसे जीवन हर बार एक नई कॉपी लेकर आता है। अगली कविता, दोपहर। दोपहर में धूप जैसे जिद्दी बच्चा हर खिड़की से भीतर आना चाहता है। काम की फहरिस्त चाय से लंबी होती है, पर नींद हथेली में बंधे रबर की तरह उछलती रहती है। सड़कें गर्म हैं, पर मन अक्सर किसी ठंडी छाया में बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। दोपहर में हर आवाज धीमी हो जाती है, जैसे दुनिया कुछ पल अपने आप से बात करना चाहती हो। अगली कविता, शाम। शाम दीवारों पर उतरती है जैसे किसी चित्रकार की उंगलियां हर रंग को धुंधला करके सुंदर बना रही हों। चिड़ियों की वापसी हर बार बताती है कि कोई भी उड़ान हमेशा लौटने की जगह छोड़ती है। चाय की प्याली में दिन का स्वाद उतरता है और बातें धीरे धीरे धूप की तरह ठंडी होती जाती हैं। शाम कोई अंत नहीं, वो एक विराम है जहां हम सोचते हैं कल सूरज फिर आएगा। अगली कविता, रात। रात दरवाजा नहीं खटखटाती, वो चुपचाप आ जाती है, जैसे कोई भूली हुई याद जो बिना बुलाए भी समझती है। तारों की चुप्पी में हर बात कह दी जाती है, पर नींद अक्सर किसी सवाल में अटक जाती है। रात एक रजाई है जिसमें हम खुद से लिपट जाते हैं और सपनों में वो चेहरे देखते हैं जो दिन में अक्सर छिप जाते हैं। कभी कभी रात

0: डराती है, पर वही रात सबसे सच्चे आंसू और सबसे प्यारे खत लिखवाती है। अगली कविता, पेड़। पेड़ खड़ा है जैसे किसी पुराने गीत की धुन, जो अब भी हवा में धीमे धीमे बज रही हो। उसकी शाखों पर बैठी चिड़ियां हर सुबह कुछ नया गाती है, जैसे हर दिन जन्म लेने लायक है। पेड़ कुछ नहीं मांगता, सिर्फ देता है, जैसे कोई वो दोस्त जो हर बार पहले माफ कर देता है। जब कोई पेड़ कटता है तो बस लकड़ी नहीं जाती, कई सारी परछाइयां कहीं लौटती ही नहीं। अगली कविता, फूल। फूल किला जैसे कोई मीठा झूठ, जिसे हम जानते हुए भी सच मानना चाहते हैं। उसकी खुशबू हवा को भी प्रेमिका बना देती है, जो हर किसी को एक सा चूमती है बिना नाम लिए। फूल जल्दी मुरझाता है, लेकिन उसकी छवि इतनी देर तक रहती है जैसे किसी के जाने के बाद उसका इत्र। फूल कहना आसान है पर बनना नहीं, उसके रंगों में धूप, पानी और धैर्य मिला होता है। अगली कविता, बगीचा। बगीचा सबको बुलाता है पर किसी को रोकता नहीं, जैसे कोई उत्सव जो हर मौसम को गले लगाता है। घास पर चलना जैसे जमीन से बातें करना, बिना शब्दों के बस स्पर्श से। बच्चे यहाँ हंसते हैं और बूढ़े यहाँ सोचते हैं, शायद इसलिए बगीचे में हर वक्त संतुलन बना रहता है। बगीचा कोई जादू नहीं है, वो बस धैर्य की उपज है, जहाँ बीज ने विश्वास से गहराई में उतरना चुना था। अगली कविता, गिलहरी। गिलहरी छज्जे पर दौड़ती है जैसे समय को चकमा दे रही हो। हर दाना जैसे उसका बचपन बचा रहा हो। उसकी पूंछ हवा से बातें करती है और उसकी आंखें हमारी रसोई के रहस्य जानती है। वो चुपचाप कई छुपी चीजों की मालकिन है, जैसे माँ की साड़ी में पुराने सिक्के रखे हों। गिलहरी कभी कहीं नहीं जाती, फिर भी हर जगह दिखती है, जैसे उम्मीद जिसका पता नहीं होता पर होती जरूर है। अगली कविता, तितली। तितली का रंग कभी स्थिर नहीं, वो हवा में उड़ते हुए हर पल में बदलती रहती है, जैसे किसी के चेहरे पर अचानक नई मुस्कान आ जाए। वो कभी फूलों पर बैठती है, कभी किसी चेहरे पर, जैसे कोई टूटती हुई उम्मीद कोई नया सपना देखने लगे। तितली बहुत दूर नहीं जाती, वो हमेशा यहीं रहती है, बस हमारी नज़रों से एक पल भर के लिए गायब हो जाती है। कभी हम उसे पकड़ना चाहते हैं पर तितली जानती है, सच्चा प्यार कभी हाथ में नहीं होता। अगली कविता, गिरगिट। गिरगिट कभी रंग नहीं बदलता, वो बस वातावरण को समझता है और उसी के हिसाब से अपने रंग में थोड़ा फेर बदल करता है। कभी वो किसी के सामने कहीं भी खड़ा हो तो हमें लगता है ये तो वही है जिसने कभी कुछ नहीं कहा। गिरगिट ने कभी राज नहीं खोले, बस किसी के साथ घुलकर उसके रंग में अपना रंग मिला दिया। वो रंग कभी मुड़ जाता नहीं, वो बस और गहरा होता जाता है, जैसे सच का सामना करते ही हमारा व्यक्तित्व और मजबूत हो जाता है। अंतिम कविता, चींटियाँ। चींटियाँ शिकायत नहीं करती, वो हमेशा एक रास्ता ढूंढती है और उस रास्ते पर सभी मिलकर चलते हैं बिना रुके। वो खुद से ज़्यादा अपने साथी की खुशी में भागीदार होती हैं, जैसे हर सफलता में कोई और भी सशक्त होता है। चींटियाँ कभी अपना नाम नहीं बताती, पर हर छोटी सी मेहनत उनके बड़े सपने दिखाती है। आखिरकार वो चींटी भी जो कुछ समय पहले अकेली थी, अब पूरे बगीचे को अपना घर समझने लगी है।
1: ये था कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आपने सुना कविता पाठ। कवि थे श्री शशांक शेखर जोशी। प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास के। संयोजनकर्ता थे श्री अमित सिंह। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति सहगान।

आप सुन रहे थे देशभक्ति सहगान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 8:45 हो रहे हैं। समय हो चला है सुगम संगीत का। कलाकार हैं ललित कुमार व्यास।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे ललित कुमार व्यास। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को हैं। आकाशवाणी जयपुर से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए इंतजार करें।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही NIA कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सहमति बनी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी अब राजस्थान और दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश की बिजली की लागत को साझा करेंगे। इस योजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उनके तय कोटे के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यमुना नदी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% खर्च सभी 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही सभी राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे भविष्य में कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही NIA से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोतरा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी गई है।

0: राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एनआईए से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इनमें बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलौदी सलूम्बर, खैरतल तिजारा, डी कोटपुतली बहरोड और ब्यावर शामिल है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
1: कल एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM को खनिजों के खनन में दुनिया की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुए जीरो लॉस माइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। कल सचिवालय में RSMM की 76वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मार्केटिंग के जरिए उपक्रम का कारोबार और मुनाफा बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 544 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आधी राशि जारी की जा चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पाली में इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। शहर में रैली भी निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को बंद क्यों किया गया है। श्री सिंह ने मीडिया को बताया कि NTA परीक्षा प्रक्रिया को कदाचार मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रश्न पत्र हर प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा से छात्रों के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत राहुल गांधी शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने और बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान 2026 कल से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री द्वारा शुरू किया गया ये विशेष अभियान 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों में होने वाली जनहानि को रोकना है।
2: प्रोग्राम 31 जुलाई 2026 तक निरंतरता में चलेगा, जिसमें हमारे यहाँ से चिकित्सा विभाग में आशा सहयोगिनी घर घर जाके 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ORS और जिंक उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जो निरंतरता में सहयोगी विभाग रहेंगे, महिला बाल विकास रहेगा, PhD रहेगा, पंचायती राज रहेगा, इन सब का हम सहयोग लेके इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो डिहाइड्रेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसको कोशिश करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
1: और अब मौसम।

0: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और चूरू में कल झमाझम बरसात हुई, वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मौसम बारिश से सुहाना हो गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। बालोतरा में भी देर रात तूफानी आंधी के साथ बरसात हुई। बारिश बाड़मेर में मौसम ने अचानक करवट ली, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाड़ू, शेव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।

0: में घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाडू, शिव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालूतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया। और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 9:10 हो रहे हैं। समय है लोक संगीत का। कलाकार हैं वीरेंद्र शर्मा।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे वीरेंद्र शर्मा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 बजने को हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग का।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय

0: इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
2: ओ,
3: उस समय हिंदुस्तान

0: के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
1: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जाबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: ओ, मंगल पांडे।
0: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
1: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी हुँ? लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,

0: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
1: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
2: खुद करनी होगी। सही कहे।
3: फिर क्या हुआ दादी?
4: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई।
3: ओ,
4: सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
4: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
3: अच्छा।
4: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ऐसा चल नहीं सकता। नहीं ऐसा ऐसा नहीं
3: पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ?
4: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
2: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
6: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
4: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था। शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था। गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
4: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
4: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
4: सारी छावनी में खलबली मच गई।
10: भारत माता की जय! भारत माता की जय!
3: उसके बाद क्या हुआ दादी?
4: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
3: दादी जी, फिर क्या हुआ?
4: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Come, bande ko, ti kona manta hai, durant hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और

0: की बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
1: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
2: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
1: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
2: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
1: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
2: अच्छा माँ।
3: माँ
2: लो, देवेंद्र भी आ गया।
3: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
1: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
2: ठीक है माँ।
3: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
2: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
3: ये देखो दीदी, ये मारा।
2: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
3: अरे ये मारा।
2: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
3: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
2: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
3: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
1: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
2: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
4: हमें अंदर आने दो।
2: अरे क्यों?
5: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
2: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
4: लड़की हट।
2: माँ,
4: ये चाकू देख रही है ना?
5: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
2: अरे
5: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
2: क्या हुआ? देखो जल्दी
6: आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
4: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
2: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
4: ये चाकू देख रही है ना?
2: छोड़ दो।
6: मुझे मत मारो,
2: कुछ मत करो।
6: चाबी मुझे नहीं मालूम,
4: जल्दी,
6: याद नहीं कहाँ रखी है।
5: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
6: अरे अरे मेरे पास को छोड़ो,
2: मेरी माँ को छोड़ो।
4: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
5: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
6: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
2: देवेंद्र।
3: हाँ दीदी।
2: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
3: अच्छा, हाँ।
2: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
3: अच्छा।
2: हेलो।
4: हाँ बेटा बोलो।
2: पापा। पापा।
4: हाँ बोलो बेटा।
2: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
4: कौन घुसा है?
2: माँ को बहुत मार रहे हैं।
4: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है? ठीक है?
2: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
3: अच्छा।
2: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
7: बचाओ। और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको। कशिका को
9: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
1: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली।

0: के पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था, मैं तो डरी गई थी।
1: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग NCERT। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। सुबह के 10 बज चुके हैं, समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए फिल्म आशाएं से श्रेया घोषाल की आवाज़ में पहला गीत। मीर अली हुसैन ने गीत को बोल दिए हैं। संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुंचाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है आशिकी 2। गीतकार हैं इरशाद कामिल। गीत को संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। फिल्म अनकही से सुनिए सोनू निगम को। अमिताभ वर्मा ने गीत को बोल दिए हैं। संगीतकार हैं प्रीतम।

ये गीत आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम था आजा नचले। लीजिए सुनिए नदीम श्रवण के संगीत से सजा समीर का लिखा गीत, जिसे आवाजें दी हैं उदित नारायण, जसविंदर नरूला और साथियों ने। फिल्म है आ अब लौट चलें।

ये गीत आपने सुना, आवाज अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की थी, फिल्म थी बागी, गीत को बोल दिए थे संजीव चतुर्वेदी ने, अमाल मलिक का था संगीत। फिल्मी गीतों के सफर में लीजिए सुनिए अगला नगमा। नदीम श्रवण ने गीत को सुर दिए हैं, बोल दिए हैं समीर ने, कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की है आवाज़, और फिल्म का नाम है आशिकी।

ये गीत आपने सुना, आवाज अरिजीत सिंह की थी, फिल्म थी हाफ गर्लफ्रेंड। गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने, संगीत था मिथुन का। कार्यक्रम में एक बार फिर से सुनिए अरिजीत सिंह को, फिल्म है ऑल इज वेल। शब्बीर अहमद के बोल हैं, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं। सुनते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम एपिसोड नंबर 16।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
3: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
2: जी,
3: विश्वास और जन कल्याण
2: जी,
3: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
2: जी।
3: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
2: जी,
3: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये जब भारत की महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
2: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?

0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने, हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज़्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहाँ पर मनुष्य आधारित गतिविधियाँ होती हैं वहाँ PM2.5 और PM10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहाँ से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोल

0: का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी,
1: प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया है। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफ़ी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केप टाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल

0: के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है, एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है

0: कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया, और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
1: जी।
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
1: जी।
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों

0: का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे। कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉर्पोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉर्पोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉर्पोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम एपिसोड नंबर 16।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 11:30 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

तेरा चेहरा। मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने ये गीत फिल्म आशिक से सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मैं तुमसे प्यार कितना, किशोर कुमार के स्वर में फिल्म कुदरत से अभी अपने ये सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म आरजू से लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, स्वर हैं लता मंगेशकर के ही।

फिल्म पड़ोसन से। लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर। स्वर हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, 12 बजने को हैं। सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक G NH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिचेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर

बजकर के 5 मिनट पर आप सुन पाएंगे महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति देंगे नेहा गोस्वामी और ज्योति वर्मा। दोपहर 2 बजे आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज 2:15 पर, दोपहर समाचार और 2:30 पर आप सुनेंगे स्टूडियो से फिल्म संगीत। शाम 5 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे हिंदी में समाचार।

शाम 5:05 पर युवा मित्र सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी। आज की प्रस्तुति देंगे साक्षी उपाध्याय और दिव्या सारस्वत।

छह बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 पर जयपुर केंद्र से आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

सात बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड के साथ होने वाले मैच की रेडियो कमेंट्री। ये मैच आप सुन पाएंगे लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण।

रात 8:45 पर आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या 9 बजे न्यूज एट 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से क्रिकेट कमेंट्री लगातार। दस बजकर के 45 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, 11 बजे हिंदी में समाचार और रात 11:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमर चैनल

सीमा मिश्रा के स्वर में। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:40 होने को हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म आंधी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने ये सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर के, फिल्म का नाम है रजिया सुल्तान।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और

0: स्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
3: मैंने

मुकेश के स्वर में फिल्म आनंद से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है आनंद आश्रम।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: प्रतीक्षा कीजिए।
0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा लगभग 84,000 करोड़ रुपए था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जैसलमेर से सेना और बीएसएफ की गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नाचना क्षेत्र के हिंगोला गांव निवासी मुश्ताक अली के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंटों के संपर्क में था। वो पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए सेना और बीएसएफ की गतिविधियों के फोटो और वीडियो सीमा पार भेज रहा था। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी को आज सुबह जयपुर लाया गया है, जहां अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मूज जल डमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न जिलों में शोभा यात्राओं और रैलियों के आयोजन हो रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर उदयपुर में आयोजित समारोह किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने तत्कालीन इतिहासकारों के नैरेटिव का खंडन करते हुए तथ्यों के साथ बताया कि प्रताप के पराक्रम और युद्ध नीति के सामने मुगल सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने और छिपने पर मजबूर होना पड़ा।

प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है। जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश में 1 से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए। ये व्यापक अभियान राज्य के 41 जिलों और 10 नगर निगम क्षेत्रों में 1,34,000 से अधिक ब्लॉकों में चलाया गया। इसमें 1,40,000 प्रगणकों, 23,000 पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस चरण में मोबाइल ऐप के जरिए मकानों, मूलभूत सुविधाओं और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई, जिसे सीधे केंद्र को भेजा गया है। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में मगरमच्छों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। पाली जिले के जवाई और देसूरी क्षेत्र के बांधों में 350 से अधिक मगरमच्छ मौजूद हैं, जो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख रहे हैं। जिला वन अधिकारी प्रशांत कस्तूरी ने बताया कि मगरमच्छों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ पानी, पर्याप्त आहार और शांत किनारों की आवश्यकता होती है। जवाई बांध में इनकी लगातार बढ़ती संख्या इस बात का सकारात्मक संकेत है कि यहाँ का वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह स्वस्थ और इनके अनुकूल है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था। राष्ट्रीय पल्स पोलो अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 28 जून रविवार को बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर। बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हो चुके हैं। आरंभ होते हैं महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति दे रही हैं नेहा गोस्वामी और ज्योति वर्मा।

0: नमस्कार सखियों, महिला जगत के स्नेहिल और आत्मीय अंक में मैं ज्योति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं
1: और मैं हूं आपकी अपनी सखी नेहा गोस्वामी। और आज हम आपके साथ बांटने आए हैं गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी कुछ ऐसी प्यारी यादें और अनुभव जो हर स्त्री के मन को कहीं ना कहीं छू जाते हैं।
0: बिल्कुल नेहा, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां आते ही जैसे मन में एक अलग ही उत्साह जाग उठता है, खासकर तब जब मायके जाने का अवसर मिल जाए। ओहो, अपने घर की पुरानी दहलीज पर कदम रखते ही बरसों पुरानी यादें जैसे फिर से जीवंत हो उठती हैं। वही आंगन, वही गलियां और बचपन की वही शरारतें, अपनों का स्नेहिल साथ, सब कुछ मन को एक अनोखी ताजगी से भर देता है ना।
1: सच्ची तो है ना ज्योति, मायका केवल एक घर नहीं होता, वह भावनाओं का वह संसार होता है जहाँ पहुँच कर उम्र चाहे कितनी भी हो जाए मन फिर से बच्चा बन ही जाता है ना। बहनों के साथ घंटों चलने वाली बातें, माँ के हाथों के

0: मनपसंद व्यंजन, पुरानी तस्वीरों को देखकर यादों के पन्ने पलटना और हर बात पर ठहाके लगाना, ये पल अनमोल बन जाते हैं।
1: और नेहा, इन छुट्टियों में घर केवल मिलने जुलने का स्थान ही नहीं रहता, बल्कि खुशियों का एक उत्सव बन जाता है। कभी सब मिलकर ताश खेलने लगते हैं, तो कभी कोई बैडमिंटन या कोई और खेल, और साथ में बैठकर तरह तरह की हस्तकलाएं, कोई पाक कलाएं है ना, सारी उस समय दिखाई देती हैं। और इन सब में घर का ऐसा लगता है हर कोना हंसी और अपनत्व से भर जाता है।
0: और ज्योति, कितना सुंदर दृश्य होता है ना कि जब नानी अपनी कला अगली पीढ़ी को सौंपती है। जैसे मेरी बिटिया ने इस बार अपनी नानी से क्रोशिया सीखा।
1: अच्छा।
0: और रात में कहानियां सुनते सुनते जीवन के छोटे छोटे पाठ भी सीखे।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और नेहा, छुट्टियों की रौनक तो तब और बढ़ जाती है ना जब सब परिवार जन मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसमें पता है सुर लगे या ना लगे, लेकिन दिए हुए अक्षर से गाना
0: आना चाहिए। बिल्कुल।
1: और फिर क्या बच्चे क्या बड़े, सब लोग पूरी बारी अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब हमको गाने का मौका मिलेगा। और साथ साथ में हंसी मजाक भी चलता रहता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में अगर अचानक बारिश हो जाए,
1: वाह वाह क्या बात कही तुमने,
0: ऐसा लगता है ना कि जैसे प्रकृति भी छुट्टियों की खुशियों में शामिल हो गई हो। मिट्टी की सौंधी महक और ठंडी हवाएं मन को ऐसी ताजगी देती हैं कि बच्चे ही नहीं, बच्चों की माएं यानी कि हम फिर से बच्चा बन जाती हैं।
1: और
0: पता है ज्योति, पिछले दिनों जब बारिश हुई थी ना, तो हम बहनें और बच्चे छत की ओर ऐसे भागे जैसे बरसों से उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। और मैं बारिश की फिसलन में ऐसी फिसली ना कि जो पूछो ही मत। पर मजे की बात पता है क्या है, मैंने अपनी कमर नहीं पकड़ी बल्कि हम सब ने अपना पेट पकड़ा, क्योंकि हमको जोरदार हंसी आई।
1: तभी तो कहते हैं ना नेहा, गर्मी की छुट्टियां केवल मौसम का नाम नहीं है, ये रिश्तों को फिर से जीने का अवसर है।
0: बिल्कुल।
1: अपनों के साथ समय बिताने का बहाना है और उन यादों को सजोने का अवसर मिलता है कि चेहरे पे मुस्कान ले आती है।
0: बिल्कुल।
1: तो सखियों, इन्हीं मीठी यादों, आत्मीय रिश्तों और छुट्टियों की खुशनुमा अनुभूतियों के साथ आज के महिला जगत का शुभारंभ करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कहते हैं धरती केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी जीवनदायिनी माँ है। यही धरती हमें अन्न देती है, जल देती है, पेड़ पौधों की हरियाली देती है और जीवन को संवारती है। लेकिन जब यही धरती अपनी नमी खोने लगती है, खेत बंजर होने लगते हैं, नदियाँ सूखने लगती हैं और हरियाली की जगह रीतीले विस्तार बढ़ने लगते हैं, तब ये केवल प्रकृति का संकट नहीं रहता बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो नेहा। और इसी चुनौती के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमेशा याद दिलाता है कि यदि हम अपनी धरती, जल और वनस्पतियों की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है।
0: ज्योति, चलो सबसे पहले हम हमारी सखियों को ये समझाते हैं कि मरुस्थलीकरण आखिर होता क्या है।
1: हाँ, सही कह रही हो।
0: सखियों, मरुस्थलीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे अपनी उर्वरता खोकर बंजर या रेगिस्तान जैसी बन जाती है। अत्यधिक पेड़ों की कटाई, जल का दुरुपयोग, अनियोजित खेती और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख कारण हैं।
1: और जब भूमि की उर्वरता कम होती है ना, तो खेती प्रभावित होती है, भोजन का उत्पादन भी घट जाता है और जल संकट बहुत गहराने लगता है। यार, इसका सीधा सीधा असर गांव के किसानों और विशेष रूप से महिलाओं के जीवन पे पड़ता है, क्योंकि जल और परिवार की आवश्यकताओं की जिम्मेदारी तो जानती हो ना, महिलाओं पर ही अधिक होती है।
0: और ज्योति, सूखा केवल पानी की कमी नहीं है, ये किसानों की मेहनत, पशुओं के जीवन और परिवारों की आजीविका से जुड़ा होता है ना। जब वर्षा कम होती है तो खेतों की फसलें प्रभावित होती है और लोगों के सामने अनेक कठिनाइयां खड़ी हो जाती है।
1: और जो ये कठिनाइयां खड़ी होती है ना, इसके साथ साथ अच्छी बात यह है नेहा कि हम सभी छोटे छोटे प्रयासों से इन समस्याओं को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें, या पेड़ लगाने की बात आती है तो पेड़ लगाएं, और जल का विवेकपूर्ण उपयोग है ना, बेवजह जल को खराब करना ठीक नहीं है, और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहना ये सबसे बड़ी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सखियों, एक पेड़ लगाना केवल हरियाली बढ़ाना नहीं बल्कि धरती की नमी बचाने, वर्षा चक्र को संतुलित रखने और आने वाले कल को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: और नेहा, साथ ही हमें अपने बच्चों में भी ये प्रकृति प्रेम की जिम्मेदारी पैदा करनी चाहिए ना, और ये भावना जब विकसित हो जाती है ना, तो नई पीढ़ी भी पर्यावरण के महत्व को समझने लगती है, और अगर वो महत्व समझेगी तभी तो धरती का हमारे भविष्य सुरक्षित रहेगा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि जल की हर बूंद का हम सम्मान करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और अपनी धरती माँ को हरा भरा बनाएंगे।
1: बिल्कुल हरा भरा बनाएंगे, क्योंकि स्वस्थ धरती ही समृद्ध जीवन की आधारशिला है। धरती मुस्कुराएगी तभी तो जीवन मुस्कुराएगा, और फिर वो

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: ज्योति, अभी हम बारिश की बात कर रहे थे ना, तो कितना अच्छा लगता है ना जब बारिश की बूंदें होती हैं और उसमें प्यारी प्यारी चिड़ियों की चहचहाहट हम सुनते हैं, तो कितना खुशनुमा मौसम हो जाता है ना वातावरण।
5: बहुत ही मधुर आवाज लगती है। और इस बारिश से ना हम इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी बरसात की बूंदें आते ही खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। सुना नहीं तुमने आजकल कितना कोयल बोलती है, कहीं मोर की आवाज आ रही है और फिर साथ में सुंदर मोर का नाच। सोचो पानी की इतनी सी बूंदों से सभी को इतनी खुशी मिलती है, तो पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।
4: बिल्कुल ज्योति, तभी तो कहते हैं ना कि बिन पानी सब सून और बूंद बूंद से सागर बनता है, ये हम सभी जानते हैं ना।
5: बिल्कुल, सोला ने सच कह रही हो तुम्हारी बात जो है, कि जो कि हमारे बुजुर्गों ने भी सदियों पहले ये बात कह दी थी और उन्होंने जान लिया था कि जैसा कि तुम अभी कह रही थी रहीमदास जी के दोहे के बारे में, वो इसलिए कि हम बहनों को इस बात पर बताना चाहेंगे कि हमारे घर की छत पर गिरने वाली जो वर्षा की बूंदें होती है ना, वो हमारे कल का सहारा बन सकती हैं।
4: बिल्कुल ज्योति, जो होती है ना जून में इस तपती गर्मी में जब हम सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं ना, तो क्यों ना आने वाले मानसून का स्वागत कुछ अलग अंदाज में किया जाए।
5: मानसून का स्वागत, वाह क्या बात कही है तुमने। कोई खास तरीका है क्या?
4: खास नहीं, बिल्कुल आम तरीका है जिसके लिए कोई भारी भरकम खर्च भी नहीं करना है, और वो है जल संचयन यानी की वॉटर हार्वेस्टिंग का, जो की बिल्कुल घरेलू अंदाज में।
5: अच्छा, तो चलिए हम अपनी जिंदगी में थोड़ा पानी और ढेर सारी समझदारी खोलते हैं।
4: ज्योति, अक्सर लोग सोचते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग तो बड़ी बड़ी सोसाइटी या फैक्ट्रियों का काम है, हमारे बस की कहाँ। तो हम आपको बताते हैं कि पानी बचाना और इकट्ठा करना उतना ही आसान है जितना अपनी छत पर खड़े होकर बारिश का मजा लेना है।
5: वाकई नेहा, जैसा नेहा कह रही है ना कि काम बहुत ही आसान है, आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे आसान और घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप बन सकते हैं वाटर हीरो। क्यों नेहा?
4: बिल्कुल। तो ज्योति, अब कुछ उपाय बता ही देते हैं।
5: तो सबसे पहला उपाय है जिसको हमने नाम दिया है, पता है
4: क्या?
5: छत का पानी ड्रम की कहानी।
4: अरे वाह, क्या बात है।
5: इसमें आपको अपनी छत पर पानी नीचे आने वाले पाइप के नीचे एक बड़ा ड्रम रख देना है, और अगर सीधा नहीं आ रहा है तो उसके साथ चौड़ा पाइप वगैरह लगा के उसे जोड़ देना है, और उसके मुंह पे एक बारीक जाली या फिर सूती कपड़ा बांध देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी कचरा ड्रम के पानी में नहीं आ पाएगा। इस पानी को हम पोछा लगाने के लिए, कोई गाड़ी वगैरह धोने के लिए, पेड़ पौधों में देने के लिए अपने बगीचे में, और या फिर जो बारिश हो जाती है तो उसके बाद नेहा कितनी गंदगी हो जाती है ना, मिट्टी फैल जाती है, जम जाती है, तो फर्श को भी धोना पड़ता है, तो ऐसे पानी को सोने में भी काम ले सकते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हमें दूसरे उपाय का नाम दिया है, बाल्टियों की जुगलबंदी।
5: अच्छा।
4: इसमें जब भी बारिश आए आप आंगन, बालकनी, छत वगैरह पर दो चार खाली बाल्टियां रख दीजिए और देखिए बिना खर्च कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा।
5: बिल्कुल। और इसी के साथ तीसरा उपाय और बताना चाहती हूँ मैं हमारी सखियों को, कि वो उसका नाम हमने रखा है अमृत जल संचय, है ना। इसमें आप एक पक्का टैंक बनवा सकते हैं जिसमें शुरुआती बारिश हो जाने के बाद जो साफ पानी बरसता है

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: उसे छत के पाइप से जोड़कर उस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और ये पानी पूरे साल पीने के रूप में भी काम आ सकता है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे ही तो पार्लर पानी कहा जाता है,
0: हाँ,
1: ना ज्योति? तुम्हें पता है कि जिन लोगों को पेट के में पाचन संबंधी जो परेशानियां रहती हैं उनके लिए ये पानी अमृत के समान है, है ना? और इसी से मैं समझ रही हूँ कि तुमने इसको तभी इसका नाम दिया है तुमने, है ना, अमृत जल संचयन।
0: बिल्कुल नेहा, आजकल तो घर बनवाते समय ही सब लोग पानी का नीचे एक टैंक ये वर्षा जल संचयन के लिए अलग से बनाने लगे हैं।
1: ज्योति, हमारी सखियां सोच रही होंगी कि ड्रम में इकट्ठा पानी गंदा हो जाएगा, इसमें कचरा पैदा हो जाएगा, मच्छर पैदा हो जाएंगे और बीमारी का कारण बनेंगे।
0: तो बहनों को बता देते हैं ना हम कि भाई पानी जो इकट्ठा करना है ना वो मानसून की पहली बारिश से नहीं करना है। वो पहली बारिश में गंदगी होती है, हमारी छतें भी साफ नहीं होती है, मिट्टी कुछ ना कुछ तो होती है, तो वो पानी के साथ बह जाने के बाद छत बिल्कुल साफ हो जाती है, उसके बाद का पानी इकट्ठा करना है और उनको अच्छी तरह से ढक वगैरह के ढक के भी रखना है।
1: और ज्योति, अगर ड्रम बाल्टी वगैरह के ढक्कन रखेंगे तो मच्छर कैसे पैदा होंगे?
0: हाँ, फिर मच्छर हो नहीं सकते हैं।
1: सिक्योर पानी का कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, है ना? उसी से हमको बचाना भी है। जरा सोचिए कि अगर आज हमने इन बूंदों को नहीं सहेजा तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे क्या कहेगी।
0: नहीं, तुम सही कह रही हो कि पानी का कोई रीइन्वेंशन हो ही नहीं सकता है, हमें पानी बचाना ही पड़ेगा। और अगर हमने पानी नहीं बचाया तो हमारे जो बच्चे हैं ना वो आने वाली पीढ़ी क्या किताबों में ही पढ़ेगी कि नदियां बहती थी, और क्या तस्वीरें देखेगी कि ऐसे पानी बहता था। ऐसा दिन भगवान करे कभी भी ना आए, इसलिए आज से ही हमको शुरुआत करनी होगी कि इस मानसून हम अपनी छत को पानी का बैंक बनाएंगे। और आप भी बनाइए और उसमें बूंद बूंद जमा करिए।
1: बिल्कुल, तो कैसा लगा सके हमारा आइडिया? क्या आप इस बार बारिश की बूंदों को अपने घर के मेहमान बनने के लिए तैयार हैं क्या?
0: मेहमान तो बनाएंगे ही, और हम तैयार हैं अपनी बहनों को बारिश की बूंदों में भिगोने के लिए इस गीत के साथ,
1: के माध्यम से।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: सखियो अब हम सुनेंगे भारतीय सेना के नाम ये संदेश जो कि कैलाश खेर की खूबसूरत आवाज में है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर। श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: ज्योति, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे सुबह की ताजी हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पौधे पर ठहरी ओस की बूंदें और अपनी मेहनत की हरियाली बनते देखने का सुख, है ना। सच तो ये है ज्योति कि प्रकृति के जितने करीब हम जाते हैं ना, मन उतना ही शांत और प्रसन्न हो जाता है। और घर का कोई छोटा सा कोना जब हरियाली से भर उठता है तो लगता है जैसे घर की मुस्कान ही बढ़ गई हो।
1: हाँ बिल्कुल नेहा, मुझे तो सुबह उठते ही सबसे पहले पौधों के पास जाना और उनकी हरियाली को महसूस करना, पत्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमसे बातें कर रही है ना।
0: अरे वाह, लगता है तुम्हें पौधों से कुछ ज्यादा ही लगाव है ज्योति, है ना। वैसे तुम्हारे घर में भी बहुत सुंदर सुंदर हरियाली रहती है ना। वैसे क्या क्या लगाया है तुमने?
1: मैंने ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं, है ना, अपने किचन गार्डन में। टमाटर है, हरी मिर्च है, धनिया, पुदीना, मीठा नीम, मेथी, पालक, ये ऐसी सब्जियां हैं ना जो कि हमें जब भी जरूरत पड़ती है एकदम ताजा मिलती रहती है ना, तो इसलिए मैंने लगा रखी हैं। और घर के कोने में नींबू का पेड़ भी लगा रखा
0: नींबू का पेड़, अरे वाह।
1: क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है ना रसोई के लिए कुछ काम की, तो मैं बस सीधा वहीं से तोड़ लाती हूँ। ताजी पत्तियों का तो स्वाद ही अलग होता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो डालती हूँ और खुश हो जाता है मन उनको देख के।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ज्योति। आजकल तो बाजार में रसायनों वाली सब्जियां आती हैं, और ऐसे में घर पर उगाई गई ताजी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी रहती हैं।
1: और इसके लिए बहुत बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि अब मेरे घर में बालकनी है, छत है, या छोटा सा भी आंगन का हिस्सा है ना, तो उसमें हम छोटे गमलों में या फिर बाल्टियों में, किसी डिब्बों में, किसी में भी पौधे उगा सकते हैं और ये आसानी से हमको ताजे मिल जाते हैं।
0: ये बिल्कुल सही बात कही ज्योति तुमने। मुझे लगता है कि इससे बच्चों में भी प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ता है ना। वे पौधों की देखभाल करना सीखते हैं और ये भी समझते हैं कि अन्न और सब्जियां कितनी मेहनत से उगाई जाती हैं।
1: बिल्कुल। और उससे एक फायदा ये भी होता है नेहा कि इस रसोई से जो निकलने वाले जो फल हैं और सब्जियों के छिलके हैं, ये हमारे उन पौधों में खाद का काम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: है ना। इससे क्या होता है, हमारा कचरा भी काम आ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और है ना, उनको पौधों को अच्छा पोषण मिल जाता है और उनको अच्छी खाद मिलती है, तो वो स्वस्थ रहते हैं।
0: बिल्कुल। सच में ये तो स्वास्थ्य, बचत और पर्यावरण तीनों का सुंदर संगम है ना। और सबसे बड़ी बात, पौधों के बीच थोड़ा

0: समय बिताने से मन भी हल्का रहता है।
1: ठीक कह रही हो तुम। एक छोटा सा जो हरा कोना होता है ना घर का, वो घर की केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाता है बल्कि हमारे जीवन में भी ताजगी और सकारात्मक भर देता है जी।
0: तो सखियों, यदि घर को में थोड़ा सा स्थान हो तो उसमें हरियाली का एक सपना जरूर बोइए। हो सकता है आज लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा आने वाले समय में सेहत, खुशी और संतोष का बड़ा कारण बन जाए।
1: और जब अपने हाथ से उगाई हुई सब्जियां थाली तक पहुंचती हैं ना, तो आहा, उनका स्वाद अलग ही होता है।
0: बिल्कुल।
1: और स्वाद के साथ साथ अपनापन होता है, उन पौधों से भी लगा होता है ना। और इसी सुंदर सोच के साथ हम कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ बढ़े।
0: बिल्कुल।

0: सखियों, गर्मी के इस मौसम में शरीर को अंदर से तरोताजा और हल्का रखना भी उतना ही जरूरी होता है ना ज्योति। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत किसी हल्के और सेहतमंद पेय से की जाए तो शरीर को ताजगी मिलती है और मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए आज आपको ज्योति है ना अपने किचन गार्डन के लेमन से लेमन टी की रेसिपी बताने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा और कागज पेन लेके बैठिएगा।
1: बिल्कुल सखियों, आपको लेमन टी अगर पसंद है तो आप बनाने के लिए एक कप पानी, आधा नींबू, एक छोटा चम्मच शहद और बिल्कुल थोड़ी सी चाय की पत्ती, और स्वाद बढ़ाने के लिए अगर चाहें तो एक टुकड़ा छोटा अदरक भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, एक पतीले में एक कप पानी डालकर उसे उबालने के लिए रख देना है। जब पानी उबलने लगे तो उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती और कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें। इसमें एक दो मिनट उबलने दें और उसके बाद गैस बंद कर दें, और फिर कप में चाय को छानने के बाद आधा नींबू का रस डाल लें और जैसा आप स्वाद पसंद करते हैं वैसा शहद डाल लें। एक बात सखियों ध्यान रखें है ना नेहा, इनको बताना जरूरी है कि नींबू हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालना चाहिए है ना, इससे उसका स्वाद और गुण दोनों भरे रहते हैं। और एक और बात बतानी जरूरी है कि हमने ये क्वांटिटी बताई है एक व्यक्ति के लिए, अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लें है ना?
0: तो देखा ना, इस तरह बहुत आसानी से हमारी स्वादिष्ट और सेहतमंद लेमन टी तैयार हो जाएगी। ये ना सिर्फ शरीर को ताजगी देती है बल्कि गर्मी के मौसम में हल्कापन और स्फूर्ति भी बनाए रखती है। आप भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर कीजिएगा सखियों, और परिवार के साथ इसका आनंद लीजिएगा। फिलहाल अब लीजिए इस प्यारे से गीत का आनंद।

0: मुस्कान बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ही तो बढ़ती हैं। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए आज्ञा। मैं ज्योति वर्मा
1: और मैं नेहा गोस्वामी, नमस्कार।

0: जाने दो ना, जाने जाने दो ना, अब तो जाने दो ना। जी हाँ सखियों, पर जाते जाते आपसे इतना जरूर कहेंगे कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को संजोइए, अपनों के साथ समय बिताइए, मन में सकारात्मक विचार रखिए और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए।
1: और जब आप नया सीखेंगे तो आपके चेहरे पे आएगी एक मुस्कान और

0: reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur, 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्यवाही तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और

0: ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में

0: श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़

कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने ये सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

विनोद राठौर और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म चाहत से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है कुमार शानू और साधना सरगम के। फिल्म का नाम है जुर्म।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में 5:30 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ज पर संध्या के 5 बजने को है। आज की हमारी दूसरी सभा प्रारंभ होती है। सभा के प्रारंभ में हमारे श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय

0: के प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं और यह समय है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का। और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं साक्षी उपाध्याय और दिव्या सारस्वत।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। मैं हूं आपकी दोस्त साक्षी
1: और मैं हूं आपकी युवा साथी दिव्या।

0: रुपया। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी बीकानेर केंद्र से युवाणी कार्यक्रम में।
1: दिव्या, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना बिजी हो गए हैं कि अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान देना भूल ही गए हैं जैसे।
0: बिल्कुल साक्षी, ये तुमने बहुत ही पते की बात कह दी है। हमारी अनियमित दिनचर्या, तनाव, मोबाइल और कंप्यूटर का आज जो हद से ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं और शारीरिक गतिविधियों की जो कमी होती आ रही है, इन कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सामने बढ़ती जा रही है।
1: हाँ दिव्या, पर ऐसे में एक ऐसा माध्यम जो बिना किसी दुष्प्रभाव के शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रख सकता है, वो है योग।
0: जी हाँ साथियों, और इसी महत्वपूर्ण विषय योग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल पर आज हम हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं।
1: दोस्तों, योग शब्द का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक विज्ञान है।
0: और साथियों, ये जानकर हम सबको बहुत खुशी है कि आज दुनिया भर में योग को अपनाया भी जा रहा है।
1: जी दोस्तों, हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, जो कि योग के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
0: और साथियों, नियमित योगा अभ्यास से शरीर हमारा लचीला बनता है, हमारे शरीर की मसल से जो मजबूत बनती है और जो रक्त संचार है वो भी बेहतर होता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है।
1: दोस्तों, योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। प्राणायाम और ध्यान तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है।
0: और आज के युवाओं में, यानी हम सभी युवाओं में जो तनाव बढ़ रहा है, जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, इस दौर में योग मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है। हमारे यूथ के लिए योग बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इससे हमारी जो स्मरण शक्ति है और ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है उसमें भी इजाफा होता है।
2: साथ ही दोस्तों, नियमित योगा अभ्यास से मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन की समस्या, पेट दर्द की समस्या, अनिद्रा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी योग को काफ़ी लाभकारी पाया गया है।
0: और योग का सबसे बड़ा लाभ ये है साथियों कि इसके लिए हमें किसी महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल थोड़े से समय और नियमित अभ्यास से हम अपने स्वास्थ्य में पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं।
2: बिल्कुल, और अगर हम दोस्तों रोज 20 से 30 मिनट भी योग या प्राणायाम या फिर ध्यान के लिए निकालते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से भी अधिक स्वस्थ रह सकते हैं।
0: तो आइए साथियों, इस जो ये महीना है हमारा जून का, योग दिवस का महीना है, इस महीने में आज के दिन हम सभी संकल्प लें कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएंगे, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे और स्वस्थ जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्यारे से गीत की तरफ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साक्षी, क्या तुम जानती हो, हर वर्ष 17 जून यानी आज के दिन मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस मनाया जाता है।
3: हाँ हाँ दिव्या, जानती हूँ ना। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि क्षरण और सूखे की समस्याओं के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता करने के लिए की गई थी।
2: जी साथियों, और मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे अपनी उर्वरता खोकर बंजर बनने लगती, यानी कि जो भूमि कभी काम आने वाली थी वो धीरे धीरे बिना काम की बनने लगती है। और इसके मुख्य कारणों की बात करें साक्षी, तो वनों की कटाई हो गई, अत्यधिक चराई हो गई, या हमारी जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भी कई हद तक इसकी जिम्मेदार है। और जल संसाधनों का जो दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं और भूमि का असंतुलन उपयोग जो कर रहे हैं, यही कारण है कि मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है।
3: हाँ दिव्या, और इसका प्रभाव केवल पर्यावरण पर नहीं बल्कि कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और लोगों की आजीविका पर भी पड़ता है।
2: और ये तो देखो जायज बात है साथियों कि सूखे की ये जो बढ़ती घटनाएं हैं, किसानों और ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए जो विशेष चुनौतियां बन रही हैं, ये भी एक इसका मुख्य घटक है।
3: सही कहा। और इस समस्याओं से निपटने के लिए वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन, भूमि संरक्षण, जल का विवेकपूर्ण उपयोग और टिकाऊ कृषियों पद्धतियों को अपनाना भी इम्पॉर्टेंट है।
2: ये बात तो साथियों हमने जब स्कूल के टाइम में तब भी हम पढ़ते थे कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही हमारे भविष्य का एक सही उपयोग कदम होगा भविष्य के लिए, क्योंकि जल है तो कल है। साथ ही देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ जल तक नहीं, संपूर्ण पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। साक्षी, एक पेड़ लगाना, थोड़े से भी पानी की बचत करना और भूमि को प्रदूषण से बचाना, ये जो छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन जब इनके हम रिजल्ट्स देखते हैं तो बहुत बड़े और फायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल दिव्या। और दोस्तों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ भूमि, सुरक्षित भविष्य।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: साक्षी, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो युवा साथियों के मन में जो इंतज़ार है उसको ख़त्म करते हैं और बात करते हैं हमारे साथियों की पसंदीदा और ज्ञानवर्धक सेगमेंट की, यानी कि क्विज टाइम की।
1: जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम आपसे पूछने जा रहे हैं वर्तमान यानी कि साल 2026 से जुड़े दो बेहद ज़रूरी और नए सवाल, जिनका जवाब हर युवा को पता होना चाहिए। इन दोनों सवालों के सही जवाब हम आपको प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में बताएंगे, तब तक के लिए आप अपना दिमाग दौड़ाइए।
0: तो साथियों, आज का हमारा पहला सवाल देश के अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है साथियों कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने नए चेयरमैन के रूप में किसे कार्यभार सौंपा है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, वर्तमान में इसरो के नए चीफ या चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है।
1: और दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल खेल की दुनिया से है, जो इन दिनों काफी चर्चा में भी है। सवाल यह है कि हाल ही में रोम डायमंड लीग 2026 में 92.62 मीटर का एक विशाल भाला फेंक में इस साल का वर्ल्ड लीडर कौन सा एशियाई खिलाड़ी बना है।
0: तो साथियों, सोचिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, इन दोनों सवालों के जवाब हम देंगे कार्यक्रम के अंत में। और साक्षी, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे मुख्य विषय नए भारत का निर्माण, मोदी सरकार के 12 वर्ष के तरफ।
1: बिल्कुल दिव्या।
0: तो साथियों, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में दैनिक युग की खास बात की और साथ ही साक्षी से हमारी जो बातचीत हुई उसमें मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस का पर्यावरण के लिए हमारा क्या योगदान रहना चाहिए, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में भी हमने बात की।
1: हाँ दिव्या, धरती और पर्यावरण की सुरक्षा तो हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन इसके साथ ही जब हम अपने बदलते हुए देश की तस्वीर देखते हैं ना, तो एक युवा होने के नाते दिल जो है हमारा गर्व से भर उठता है, नहीं?
0: बिल्कुल सही कहा साक्षी, और इसीलिए आज हमारा जो यूथ प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, इसके हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं बेहद खास और प्रेरणादायक विषय पर, नए भारत का निर्माण और मोदी सरकार के 12 वर्ष। साथियों, 2014 से 2026 तक मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस दौरान नए भारत पर खूब काम हुआ है, जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, तो इसके भी हम साक्षी रहे हैं।
1: ये विषय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है दिव्या। बीते 12 वर्षों का ये सफर सिर्फ समय का बीतना नहीं है, बल्कि ये गवाह भी है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरने का। चाहे वो डिजिटल क्रांति हो, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना हो, और फिर देश की बुनियादी ढांचे, आजकल का युवा जो बदलाव है वो महसूस भी कर सकता है।
0: यही कह रही हूँ मैं कि ये जो बदलाव हमने आंखों से देखे हैं, जब हम नए भारत की बात करते हैं साक्षी, तो सबसे पहले दिमाग में आता है डिजिटल इंडिया। आज एक छोटा सा रेहड़ी पटरी किनारे वाला जो भी भाई लोग हैं, हमारे जो भाई देश के युवा हैं, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, हर कोई यूपीआई के जरिए लेन देन कर रहा है, यानी कैशलेस इंडिया का जो सपना देखा था वो सच भी हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश

0: भी आज भारत के इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हैरान हैं।
1: वाकई दिव्या, और इस डिजिटल क्रांति ने हमारे देश के युवाओं को, युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खोल दिए हैं। आज स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं की बदौलत भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। अब हमारा युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं है दिव्या, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन चुका है।
0: हाँ, और साक्षी, महिला होने के नाते बात करती हूँ महिला सशक्तिकरण की, या यूं कहूँ कि नारी शक्ति है जो इस नए डिजिटल इंडिया में अपनी जो भूमिका निभा रही है वो वाकई में बेमिसाल है। मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन का है जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो महिलाएं उद्यमियों की तरह काम करती हैं वो लोन लेकर अपने काम को बढ़ावा दे रही है। आज सेना से लेकर स्पेस टैग तक हमारी बेटियां हर मोर्चे पर हमारे देश का नाम रोशन कर रही है।
1: बिल्कुल दिव्या, और अब जब स्पेस की बात चल ही रही है तो हम गगनयान, चंद्रयान और आदित्य L1 को कैसे भूल सकते हैं। बीते 12 सालों में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में जो ऊंची छलांग लगाई है ना, उसने युवाओं के भीतर वैज्ञानिक सोच और स्पेस सेंटर में करियर बनाने का एक नया जोश भर दिया है।
0: और इसके साथ ही साक्षी, बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रट्टा मारने वाली पढ़ाई की जगह अब स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया है, जो हम युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। IIT करने की बात हो, IIM और एम्स जैसे जो उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे हमारे देश के युवाओं को अपने देश में विश्व स्तरीय जो शिक्षा मिल रही है वो भी एक सोने पे सुहागा ही है।
1: सही बात है दिव्या। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें और नए एयरपोर्ट्स जिस रफ्तार से बन रहे हैं उसने देश की कनेक्टिविटी को बदल कर रख दिया है। बीकानेर के हमारे युवा साथी भी इस बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की रफ्तार को बखूबी देख पा रहे हैं।
0: बिल्कुल साथिया, चाहे वो लोकल हो या ग्लोबल, आज मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल से लेकर डिफेंस तक के सारे सामान आज हमारे देश भारत में बन रहे हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो साक्षी, जो आज का हमारा भारत है ये आत्मनिर्भर बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
1: सही कहा दिव्या, और आज इस चर्चा से ये साफ है कि इन 12 वर्षों में नए भारत की जो नींव रखी गई है उसकी सबसे बड़ी ताकत आप और हम, यानी इस देश का युवा ही है। इस विकास यात्रा में हमारी भागीदारी सबसे अहम है,
0: और इसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं इसी सकारात्मक सोच के साथ। युवाणी के इस सफर में सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो युवा साथियों और मेरी प्यारी साक्षी, विकास और आत्मनिर्भरता की शानदार चर्चा के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो सीधे हमारे राजस्थान के गौरव, संस्कृति और खूबसूरती से जुड़ा है। साक्षी, जब भी राजस्थान में घूमने का या किसी खूबसूरत जगह की बात आती है तो मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आता है।
3: बिल्कुल दिव्या, मैं समझ गई कि तुम किस शहर की बात कर रही हो। हमारा प्यारा उदयपुर है ना?
2: एकदम सही पकड़े हो।
3: यानी कि झीलों की नगरी, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता था। आज हमारे युवाणी प्रोग्राम में हम इसी खूबसूरत शहर की सैर करने वाले हैं।
2: तो साथियों, गर्मी भी है, कुछ हल्की फुल्की बारिश भी है, तो अब हम जैसे फिजिकली तो नहीं जा सकते, लेकिन इमेज कर लेते हैं कि अब युवाणी के माध्यम से ही चलते हैं। तो साक्षी, जो उदयपुर हमारे सिर्फ राजस्थान की शान नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र भी है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा एक खूबसूरत सा शहर,

0: अपनी झीलों, महलों और बेमिसाल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है पिछोला झील।
1: हाँ दिव्या, पिछोला झील, जब ढलते सूरज की किरणें पड़ती हैं यहाँ तो वो नजारा वाकई जादुई होता है। इसी झील के बीचों बीच बना है लेक पैलेस। दिव्या, ऐसा लगता है मानो पानी पर तैर रहा हो वो। इसके अलावा फतेह सागर झील, जो कि युवाओं के लिए तो बहुत पसंदीदा हैंगआउट प्लेस माना गया है, जहां शाम के वक्त जो समय होता है वो बिताना काफी लोग

0: काशी देखें तो देखने को बनती है शीशमहल, और वहां से पूरे उदयपुर का जो नजारा है वाकई देखने लायक होता है।
1: बिल्कुल दिव्या, और उदयपुर में एक और बेहद खूबसूरत जगह है, सहेलियों की बाड़ी। इसके खूबसूरत बगीचे, कमल के तालाब और संगमरमर के फंवारे सैलानियों को भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है दिव्या कि इसे राजा ने महारानी और उनकी सहेलियों के मनोरंजन के लिए बनवाया था।
0: इसके साक्षी आगे बढ़ते हैं तो उदयपुर के पास ही स्थित है सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, जो पहाड़ियों की ऊंचाई पर बना हुआ है। वहां से सनसेट का जो नजारा देखते हैं तो देखते ही बनता है, एक अलग ही रोमांचक मतलब नजारा है वो। और जो लोग हमारी पारंपरिक संस्कृति को बहुत ही करीब से देखना चाहते हैं, उनके लिए बागोर की हवेली में होने वाला राजस्थानी लोक नृत्य का जो प्रोग्राम चलता है वो तो अगर आप साथ ही उदयपुर जाते हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करना।
1: सही बात है दिव्या, बीकानेर की तरह उदयपुर की हस्तशिल्प कला, बांधनी की साड़ियाँ, मोजरी और वहाँ का पारंपरिक राजस्थानी खाना, खासकर की दाल बाटी चूरमा, पर्यटकों का दिल जीत लेता है। आज का युवा ट्रैवलर ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना और हमारी धरोहर को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुँचाना बहुत पसंद करता है।
0: बिल्कुल, और साथियों उदयपुर की खूबसूरती और वहाँ की संस्कृति को शब्दों में समेटना बहुत ही मुश्किल है, तो उसे वहाँ जाकर देखकर महसूस करना एक बढ़िया डिसीजन हो सकता है। तो साथियों जब भी आपको मौका मिले तो बैग उठाइए और झीलों की नगरी की सैर जरूर कीजिएगा।
1: तो चलिए दोस्तों, उदयपुर के इस खूबसूरत सफर के बाद अब युवाणी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक सुरीला सा गीत।

0: साथियों, हमने झीलों की नगरी उदयपुर की शहर भी कर ली है, घूमर पर थोड़े थरक भी लिए हैं, तो अब आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान की एक और अनमोल विरासत से। साक्षी हमारे राजस्थान के मिट्टी में कला और संस्कृति जो कोट कोट कर भरी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ के रंग बिरंगे लोक नाट्य।
1: बिल्कुल दिव्या, राजस्थान के लोक नाट्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी सदियों पुरानी कहानियों, इतिहास और सामाजिक संदेशों को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आज के इस डिजिटल दौर में भी इनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है।
0: बिल्कुल सही कहा साक्षी तुमने। जब हम राजस्थान के यानी हमारे प्यारे से राजस्थान के लोक नाट्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जुबा पर नाम आता है ख्याल का। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के ख्याल प्रसिद्ध हैं। और साथियों जो जिनके लिए नाम है ख्याल, वो सोचते हैं ख्याल यानी हमारी सोच, कोई थॉट। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये हैं कुचामन के ख्याल, सिखावटी के ख्याल और हेला ख्याल, जो इनके लोक नाट्य का ही दूसरा नाम है। इनमें गीत और संगीत के माध्यम से पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाई जाती हैं।
1: जी दिव्या, और ख्याल के साथ साथ जयपुर का तमाशा भी तो बहुत मशहूर है। ये एक अनूठा लोक नाट्य है जो खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। इसमें संगीत, नृत्य और संवादों का जो तालमेल होता है ना, वो दर्शकों को बांध कर रख देता है।
0: और जब साक्षी हमारे मेवाड़ क्षेत्र की जो गवरी लोक नाट्य, तो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य नाट्य है, जो भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। रक्षाबंधन की अगले दिन से शुरू होकर यह करीब 40 दिनों तक चलता है। वो अपने आप में एक अनूठी परंपरा है, और मेरे ख्याल से देखूं तो सबसे लंबा चलने वाला जो लोक नाट्य है वो गवरी लोक नाट्य ही है।
1: वाकई में दिव्या, ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है। इस तरह बीकानेर और जैसलमेर की रमत को हम कैसे भूल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे बीकानेर की रमतें तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध हैं। होली के दिनों में रात रात भर चलने वाले ये लोक नाट्य को देखने तो पूरा शहर उमर पड़ता है।
0: हाँ, और साक्षी बीकानेर की रमतों का तो एक अलग ही मिजाज है, रूप है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, खासकर अलवर और भरतपुर क्षेत्र में जो नौटंकी लोक नाट्य है वो बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें नगाड़ा, ढोलक और हारमोनियम की थाप पर कलाकार

0: बड़े ही मजेदार अंदाज में अपनी बात को जनता तक रखते हैं।
1: और दिव्या, एक और खास विधा है चार बेत, जो टोंक जिले के की प्रसिद्ध विधा है। ये मूल रूप से एक काव्यमय लोक नाट्य है जो जिसे डफ बजाकर बहुत ही ऊंचे स्वर में और जोश के साथ गाया जाता है। पुरानी संस्कृति का प्रभाव के लिए यहाँ विधा सुनने वालों में एक अलग ही ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा है साक्षी तुमने। आज के हमारे युवाओं के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थिएटर और सिनेमा के इस दौर में भी हमारे इन लोक नाट्यों की जड़ें कितनी मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात है साथियों, ये जो हमारे लोक नाट्य हैं, ये बिना किसी मंच के, बिना किसी टिकट के और बिना किसी बिजली के भी आज तक होते आए हैं। चौपाल, खेत या किसी भी मंदिर के आंगन में ही इनका रंगमंच बन जाता है। ढोल, नगाड़ा और सारंगी की धुन पर कलाकार अपनी आवाज से ही पूरे गांव को बांध देते हैं। आजकल टीवी, मोबाइल के जमाने में ये परंपराएं कमजोर पड़ रही हैं, पर इसे हमें सब मिलकर बचाना होगा, क्योंकि भाषा मरेगी तो हमारी संस्कृति भी मर जाएगी। तो ये जो लोक नाट्य हैं, ये हमारी पहचान है और इन्हें बचाए रखना और आगे बढ़ना हम युवाओं की ही जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही बात है दिव्या। और दोस्तों, इसी गौरवशाली संस्कृति धरोहर के बाद आगे चलते हैं युवाणी के इस प्रोग्राम के आखिरी गीत की तरफ।

0: साथियों, युवाणी में हमने नए भारत से लेकर उदयपुर की खूबसूरती और राजस्थान के लोक नाट्यों तक की सारी बातें कर ली। अब वक्त हो चुका है प्रोग्राम की शुरुआत में जो दो सवाल आपसे पूछे थे उनसे सही जवाब जानने का। तो साक्षी, तुम्हें याद होगा हमारा पहला सवाल हमारे युवा श्रोताओं से ये था कि वर्तमान में इसरो के नए चेयरमैन कौन है। उसका जवाब है डॉक्टर वी नारायण, जिन्होंने 2025 में पदभार ग्रहण किया।
1: और वहीं दोस्तों, हमारा आज का दूसरा सवाल था कि रोम डायमंड लीग 2026 में 92.62 मीटर का वर्ल्ड लीडिंग थ्रो फेंककर किसने एशियाई खिलाड़ी सुर्खियों में कौन सा एशियाई खिलाड़ी सुर्खियों में रहा था। तो दिव्या, क्या तुम इसका सही जवाब बताओगे हमारे दोस्तों को?
0: जी जी साथियों, इसका जवाब है रुमेश थरंगा पाथीरागे। तो उम्मीद है साथियों कि आपके सारे जवाब, दोनों जवाब सही होंगे। तो अब कार्यक्रम में ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस सफ़र में इतना ही। चलते चलते बस यूं ही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और ख्याल रखिएगा हमारा भी, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपका अपना प्रोग्राम युववाणी शाम ठीक 5:05 पर। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी साक्षी उपाध्याय और दिव्या सारस्वत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 5:55 हुए हैं और ये समय है आगे की रूपरेखा जानने का, तो लीजिए सुनिए आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन्हें प्रसारित किया जाएगा हमारे जयपुर केंद्र से।

आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड के मध्य हेडिंगले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण होगा। इसका सीधा प्रसारण होगा संध्या 7 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड के मध्य हेडिंगले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण होगा संध्या 7 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

आप ये प्रसारण सुन पाएंगे जब तक मैच का समापन नहीं हो जाता, तब तक के लिए आपके लिए होगा ये प्रसारण।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर संध्या के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेयर्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 178,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 154,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिएगा। नितिन मुकेश और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे फिल्म ईश्वर से।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए,

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म अभिमान से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिएगा फिल्म क्रांति से। इसमें आप सुनेंगे नितिन मुकेश की आवाज़ को, जिनका साथ दे रही

Akashwani at 90. आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए इस कड़ी का अंतिम छोर यानी कि अंतिम गीत सुनिएगा। यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में फिल्म चश्मे बद्दूर से ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने को है। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: समाचार मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ये राशि प्रदान की जाएगी। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सामाजिक सुरक्षा

0: कवरेज का विस्तार करना है। इस योजना से देश भर में लगभग 15 लाख आशार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। योजना के तहत पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले कार्मिकों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। साथ ही रोजगार देने वाले नियोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। श्री शर्मा ने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं और सेवाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर पानी छोड़े जाने के संबंध में पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समस्या का समाधान करने और तुरंत पानी छोड़े जाने का आग्रह किया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किसान प्रदर्शनकारियों से इस मामले पर जातिगत राजनीति नहीं करने की बात कही, साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कोटा प्रवास पर हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर दशहरा मैदान में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक यात्री बस आज तड़के वडोदरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोग बांसवाड़ा के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें तथा अन्य बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के असर से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि ऐसे इलाके जहां मिट्टी में खारापन बढ़ने का खतरा अधिक है, वहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और यूरिया तथा केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की

0: जरूरत पर जोर दिया।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड को अब डिजी लॉकर पर प्राप्त और साझा किया जा सकता है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेशवासियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था से नागरिक डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना जन आधार दस्तावेज डाउनलोड और सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही जन आधार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए इसकी डिजिटल प्रति का उपयोग भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में परिवारों की पहचान के लिए जन आधार अहम दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे व्यापक रूप से काम में लिया जाता है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में एक अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ. प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स, जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। श्री बागड़ी ने कहा कि उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उनका जीवन अन्याय और अनैतिकता से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभिन्न धार्मिक पीठों के साधु संत तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
3: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाह टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर पाली, डूंगरपुर, भरतपुर और चूरू सहित विभिन्न जिलों में पुष्पांजलि और गौरव गान कार्यक्रम रखे गए। इस उपलक्ष में किशनगढ़ में हेलमेट वितरण कर यातायात सुरक्षा का संदेश दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने आज साइबर अपराधियों को पैरासाइट यानी परजीवी कहा। अदालत ने कहा कि मासूम निवेशकों को ठगने वाले इन अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। साइबर अपराध के पीड़ित पूरे देश में फैले हुए हैं और कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज से नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ये पहल की गई है। इस साल की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत

0: की पहचान रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अलवर जिले में इन दिनों विकास परियोजनाओं, जल संरक्षण, कृषि जागरूकता और खेल गतिविधियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात

0: सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अलवर जिले में इन दिनों विकास परियोजनाओं, जल संरक्षण, कृषि जागरूकता और खेल गतिविधियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीते दिनों अलवर आए। उन्होंने अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपूतली बहरोड जिलों से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं, रेलवे से जुड़े कार्यों, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, ई बस संचालन तथा किशनगढ़ बास क्षेत्र में एयर स्ट्रिप और MOR निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रामजल सेतु परियोजना, अलवर भरतपुर चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बीसलपुर वाटर लिंक परियोजना तथा रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। अलवर, भिवाड़ी और नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नए औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यटन क्षेत्र में बाबा भर्तृहरि, बाबा मोहनराम, गरबाजी, लालदास महाराज मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर चर्चा की गई। कांकवाड़ी, कुशालगढ़, अजबगढ़, नीमराणा और तिजारा फोर्ट को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव ने मिनी सचिवालय परिसर में राजीविका महिला समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। बीते दिनों इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका और बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समापन समारोह में भाग लेकर विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। बालिका वर्ग में अलवर की टीम विजेता रही और कोटा की टीम उपविजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम विजेता और अलवर की टीम उपविजेता रही। विभिन्न खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर और अन्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। गंगा दशहरा के अवसर पर राजगढ़ क्षेत्र के मंगलसर बांध पर अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव रवि जैन और जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने इस दौरान सरोवर पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई, जल संचयन और पौधरोपण के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया गया। अलवर जिले के बगड़ राजपूत गाँव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत के लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कृषि गोष्ठी में भाग लेकर किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और परंपरागत खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत की सेहत और मानव स्वास्थ्य का आपस में सीधा संबंध है। कृषि अधिकारियों से किसानों को जागरूक करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाने को कहा। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। गुजुकी गांव के किसान महेंद्र कुमार सैनी ने पॉलीहाउस, मल्चिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसी योजनाओं से आय बढ़ने की जानकारी दी। वहीं किसान नवाब सिंह ने मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के बारे में बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मथुराधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो पुगावण रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावण बीच संतुलन बनावण माथे जोर दीनो। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राख हर वन याद करी जिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY रातेत करीब 2400 करोड़ रुपया री रकम पात्र लोगों ने देवन रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रा दफ्तर सेवा तीर्थ माए रख्या जावन वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रे जरिए आ रकम दी जावेला। लारला साल अगस्त महीना माए चलाई ची ई योजना रो मकसद नौकरी धंधा रा मौका माए बढ़ोतरी सागे सामाजिक हिफाजत रो दायरो बढ़ावणो है। PMVBRY उन देश माए करीब 15 लाख जना ने काम धंधो करण माए मदद मिलेला। ई योजना रा तहत पहले दफा शामिल होवण वाला ने 15,000 रुपया ताई री रकम दो किश्ता माए दी जावे है। इस आगे नौकरी देवण वाला ने हर अतिरिक्त कर्मचारी सारू हर महीना 3,000 रुपया ताई री रकम मिले है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त 20 जून ने जारी करी जावेला। पीएम किसान सम्मान निधि री ई किश्त रे जरिए 9,44,00,000 उबत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपये उबत्ती रकम जमा कराई जावेला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किश्ता माए कुल 6,000 रुपया सालाना री मदद दी जावे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो जायजो लीनो। श्री शर्मा उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर माए लगाई जा शिविर माए पट्टा सर्टिफिकेट और दिव्यांगजन ने मदद री रकम रा चेक और जरूरी साजो सामान दीना। इस दौरान वह शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर और विचार पूछा। मुख्यमंत्री जनताओं वारा आरे सारे रा जरूरतमंद लोगों ने शिविरां ताई पुगावण माए मदद करण री अरज कीनी। वह कहो कि जनता रा नुमाइंदा अहलकारा कर्मचारियां और जनता री भागीदारी हुई शिविर सार्थक बनेला। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी योजनावां और सरकारी सेवावां रो फायदो पुगावणो तय कीनो है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों में जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि
0: किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप गांव माए प्रदर्शन कर रहा है। इन बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात कर और पानी छोड़न रे बारा माए वन कागज सौंपियो। वह मुख्यमंत्रियों बातचीत कर और समस्या हल करण और नहरा माए बेगोई पानी छोड़ बारी अरज कीनी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ई मामला माए जातिगत सियासत नी करण बाबत कहो है। लोकसभा माए विपक्षरा नेता राहुल गांधी आज कोटा पधारिया, मारो कांग्रेस रा कई आला नेता स्वागत कीनो। राहुल गांधी रो भणाई लिखाई हूँ जुड़ी व्यवस्था माए सुधार और परीक्षावां माए साफ कोई रबारा माए विद्यार्थियों सागे बातचीत करण रो कार्यक्रम है। इन बीच राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोट

0: मेडिकल कॉलेज रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रो दौरो कैरर वठे भर्ती जापा वाली लुगाइयां अरवारा परिवार वाला सागे बातचीत कैरर वठे इलाज रा सुविधा ना बारा माय जानकारी लीनी। बांसवाड़ाऊं गुजरात माए सूरत जा रही एक बस आज तड़के वडोदरा कने हादसा रो शिकार फेंकी। ई कारण 6 जना री मौत वेगी और 27 मुसाफिर जख्मी फेंक्या। जख्मी लोगों ने वडोदरा रा SSG अस्पताल में भर्ती कराई चिया है। हादसा रे कारण मरण वाला लोग बांसवाड़ा रा रहवासी हा। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक माथे AIR न्यूज़ राजस्थान पर आई सुन सको हो। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ओ दिन रेगिस्तान रा पसारा और सूखा रा असर रो सामो करण सारू जाग जगावन रा मकसद मनायो जावे है। ई मौके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली में राखी जा कार्यक्रम में कहो कि सरकार 2,60,00,000 हेक्टेयर जमीन ने उपजाऊ बनाने तयकीनो है। श्री यादव कहो कि मिट्टी में खरोपन बधन री शंका वाला हलका में प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो दियो जावनो चाहिए। वे विकास और पर्यावरण री हिफाजत बीच संतुलन बनावन री जरूरत माथे जोर दिनो।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड अब डिजी लॉकर माथे हासिल करियो जा सके है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर बीच व्या करार पाछे ओ सुबी तो मुहैया कराई चो है। ई पाछे अब डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट माथे लॉग इन कर और जन आधार रो कागज डाउनलोड और सुरक्षित रखियो जा सके है। इस आगे जन आधार जुड़ी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां सारू इनरी डिजिटल कॉपी काम ली जा सकेला। ध्यान जोग है कि राज्य में परिवारां री पिछाण सारू जन आधार खास कागज है। प्रदेश में जन्मताई बच्चा रे मर जावन री रेट IMR लगातार कम फैर रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का न्यू मिली जानकारी रे मुजब शिशु मृत्यु दर में एक अंक री कमी दर्ज करी ची है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी आकाशवाणी ने बतायो कि लगातार स्वास्थ्य जांच, टीका लगावन और स्वास्थ्य जुड़िया सुविधा में बढ़ोतरियों बच्चा ने बेहतर देखभाल मिल रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: हिम्मत अर खुदरा मान री अमर निशानी महाराणा प्रताप री जयंती अर हल्दी घाटी री लड़ाई माए अकबर रे खिलाफ जीत रा 450 साल पूरा भेवन रे मौके आज प्रदेश माए कई कार्यक्रम रखी चिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भारतीय क्षत्रिय महासंघ री ओर जयपुर माए राखी चिया मान जलसा माए महाराणा प्रताप ने याद करता थका मारा आदर्शा माथ चालन बाबत कहो। श्री बागड़े कहो कि महाराणा प्रताप री जिंदगी अन्याय और अनैतिकताओं लड़बारी सीख देवे है। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके उदयपुर माए शोभा यात्रा निकाली जी और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा राखी जी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा न्यारी न्यारी धार्मिक पीठा रा साधु संत और मोटी तादाद माए लोग शामिल भया। ये मौके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा सर संघ चालक मोहन भागवत महाराणा प्रताप री लड़ाई ने देश री स्वतंत्र चेतना खुदरा मान और सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक अस्मिता री हिफाजत री निशानी बताई।
1: हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए फूल चढ़ावन और गौरव गान रा कार्यक्रम राखी चिया। ये मौके सलुम्बर जिला रा चावंड माए महाराणा प्रताप स्मारक स्थल माथे महाराणा प्रताप री मूर्त माथे फूल माला चढ़ाई जी और खास कार्यक्रम राखी चियो। पाली माए राखी चिया कार्यक्रम माए पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत महाराणा प्रताप री मूर्त माथे सिरधारा फूल चढ़ाया। वठे न्यारी न्यारी सामाजिक संस्थाओं की ओर जुलूस और रैली निकाली जी। अजमेर जिला रा किशनगढ़ माए स्कूटर मोटरसाइकिल चलावन वाला ने हेलमेट देर यातायात सुरक्षा रो संदेश दियो चियो। झुंझुनू माए आज नुआ अग्निवीरा रो मान करी चियो। ई मौके राखी जिया कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग कहो कि झुंझुनू जिलो हिम्मत और बहादुरी सारू न्यारी ओळखाण राखे है और वठाऊ फौज माए भर्ती वैर देश री सेवा करण री रीत रही है। वह कहो कि ऐड़ा जलसा नौजवाना ने आगे बढ़वारी सीख देवे है। अरब मौसम राज्य में कई ठोणा लाड़ला दिना भी बिरखाऊ पारो उतरियो है। कठे कठे तापमान 13 डिग्री सेल्सियस ताई कम थियो। चौमासाऊ पहली री बिरखा रा असर अब आखा राज्य में लू रो असर खत्म वे गयो है। मौसम विभाग रे मुजब काल श्री गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ टोंक बारां और करौली समेत 20 जिला माए ऑरेंज और अलवर भरतपुर अजमेर डीग और जयपुर समेत 16 जिला माए बादलों री गाज और बिजलियां री चमक सागे बरसात वेवण और जोरदार बायरो बाजण रो येलो अलर्ट जारी कर चेताई चियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपए री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांत रा हरेक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावा और सेवावा रो फायदो पुगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर दीनो। और महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7 बजे हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड के मध्य हेडिंग्ले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण आंखों देखा हाल। लीजिए सुनिए वुमेन आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाला खेल का आंखों देखा हाल।
3: चैंपियन है इस समय तैयार हो रही हैं नीदरलैंड की गेंदबाज और सामना करने के लिए भारत की स्मृति मानधना बाएं हाथ की। दाएं हाथ से उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडॉन की तरफ, लेकिन रन लेने का वहां पर कोई भी प्रयास नहीं किया। ज्वेलिंग जो मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं इस समय तैयार हैं और जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा हम आपको पूरी टीम का विवरण भी देंगे। फिलहाल क्योंकि मैच शुरू हो चुका है स्मृति मानधना तैयार हैं। एक बार फिर से उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर था, संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से एक अतिरिक्त रन, तो भारत का खाता खुला एक अतिरिक्त रन के माध्यम से। वाइड के जरिए मिला है ये रन और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज एक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी हैं, सैफ अली वर्मा और स्मृति मंधाना ने केवल एक गेंद अब तक खेली है और रन लेने का सिलसिला अभी उनका शुरू नहीं हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसे पुल किया था शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि वो दो रन जुटा लें। भारत का स्कोर हो गया 3 रन बगैर किसी नुकसान।

के। नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स कुछ देरी से खोले हैं, हम आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच गेंद धीरे कुछ धीमी गेंद थी, अपनी रफ्तार पर थोड़ा नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया स्विंग होने के लिए, अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के

0: अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को

0: ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत

0: की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार

0: पारियां खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
2: Excellency, hum jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sevaen de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai. Mujhe pura vishwas hai ki samjhote mein seafarer ki suraksha bhi sunishchit hogi aur usko prathmikta milegi. Excellency, main phir ek baar पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ।
1: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on

0: 210. And now the sweeper goes on the back, on the fence on the offside. There's a deep cover now. Next ball. She played it. She came forward to play and then ended up playing from the crease. She was deceived in the flight. Beautifully bowled by Deepthi Sharma. A successful over, 1 for 9 from that over. And at the end of that over, over number 8, Netherlands 2 for 54.
1: नीदरलैंड्स के स्कोर इस समय 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जो दो खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन लौटे हैं, हीथर सीजर्स, कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकेन बोर, कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स, बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन। दीप्ति शर्मा जैसे ही मैदान पे आती हैं वो एक सनसनी फैलाने के लिए बॉलिंग गेंदबाजी करती हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पाकिस्तान के विरुद्ध की, जिस तरह आधी टीम को बाहर किया था। इस बीच एक बार फिर से श्री चंडी की गेंद को स्वीप किया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर खड़ी फील्डर ने उसे गेंद को फील्ड कर लिया, कोई मौका नहीं। आज एक दुर्भाग्य रहा भारत का कि श्रेयंका पाटिल अपनी ही गेंद पर गेंद को रोकते हुए गिर पड़ी थी और एंकल चोट उनको लगी है। उनको मैदान के बाहर ले जाया गया। राधा यादव उनकी जगह फील्डिंग कर रही हैं। समय नीदरलैंड्स का स्कोर 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 155 रन की आवश्यकता है, 71 गेंदों का सामना भी करना है। डी लीट इस समय खेल रही हैं 13 रन के स्कोर पर, कालिस खेल रही हैं 4 रन के स्कोर पर। ड्राइव किया से पॉइंट की तरफ पर राधा यादव ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में फील्डिंग कर रही हैं श्रेयंका पाटिल की स्थान पर। श्री चरणी जिस तरह से गेंदबाजी कर रही हैं, एक ऑफसाइड में एक दीवार से खड़ी कर रखी है कप्तान। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप करना चाहती थी, अंपायर की तरफ देख रही हैं और वाइड का इशारा। इस मैच में जो अंपायर हैं क्लियर पोलोशेक और सूर्य डफन जो कर रही हैं मैदान में अंपायरिंग, लॉरेन एगेन बैग तीसरे अंपायर यानी टीवी अंपायर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं। इस समय नीदरलैंड का स्कोर 56 रन पर। 2 लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़ता जाए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी बहुत मुस्तैदी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह की अभी तक जो फील्डिंग में एक कसावट नज़र आती है नीदरलैंड्स की फील्डिंग के मुकाबले, वो अभी तक भारत के लिए बहुत ही संतोषजनक बात है। 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। डी लीडे इस समय खेल रही हैं, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया था सीधे कवर्स के पड़े खिलाड़ी के हाथ में। शेफाली वहां पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया, रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया। श्री चरणी इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करती हैं। श्री चरणी जैसे बाएं हाथ की गेंदबाज हैं और बैटर्स को कोई मौका नहीं दे रही हैं। इस बार श्री चरणी गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, स्लॉट पे पड़ी, ड्राइव किया ऐसे, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर पर हरमनप्रीत कौर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई भी मौका नहीं दिया। लीड और कैलिस इस समय दो बैट्समैन बैटर्स खेल बीच मैदान पर, बाबेट डी लीड जो कप्तान हैं। इस बीच एक बार फिर से श्री चरणी की गेंद लेग स्टंप की तरफ, गेंद को टर्न किया था और देखना है गेंद पैड से टकराई या बैट से लग के गई। अब जाके फील्ड किया दीप्ति शर्मा ने और अंपायर भी देख रही हैं और बेल्स हालांकि वहां पर बिखेर दी थी, एक हाथ ऊपर करके एक हल्की सी अपील विकेट के पीछे से श्रेया घोष कर रही हैं, लेकिन अंपायर ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 9 ओवर की समाप्ति पर 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर।
0: Well, it's a bit grinding there for Netherlands, and the asking rate now is just beyond, slowly beyond the reach now. It's almost touching 15 and over. So they probably can gain a lot of experience by the time this match ends, and I'm sure somewhere down the line we're going to see some of these players from Netherlands in the early IPL games also, and they like to play in such a big crowd in India. And 2 for 59. But interestingly, I was just observing one thing, is that these matches are not played under the artificial lights. And probably one of the reasons they would have found is they're clashing with the timing of the football games played in the United States and Mexico and Canada. Deeply bowled, first ball, worked away on the onside, and they'll run an easy single indeed. And D-lead, she's on 15 from 13, Callis 6 from 6. It's 2 for 60 from 9.1 overs. Cranthius bowled 2 overs for 9, Nandini 2 overs 1 for 16, Shafali 1.

0: 5 is Nan for 14, and Sri Charani is bowled along with Deepthi Sharma. Sharma in the second over, close to some bowls, and she stops. I think she lost the footing over there, and then the umpire says it clears it as a dead ball. She wants to shuffle in the field now. It's been a bit of a blue sky, could see all around the Leeds ground, and which means that we don't want to see a threat of rain. It's one of those ground where when you play most of the matches in England in particular, the daylight pattern could change. Deepthi bowls. She's down the track, hoists it high in the air, over mid on, one bounce, the fielder, Shefali, and not more than that. We didn't get a six in the last game that the Netherlands played against Bangladesh, so they're not finding those long boundaries. As a matter of fact, 2 for 61 in the 10th over. They need 149 from 64. It's very demanding now, as a matter of fact. Deepthi bowls slower and plays with an angle face of the bat. Beautifully played. There was a bit of a deft touch in that. It's going down towards the deep third man area. Smriti Mandhana, she's after it. And she chases, fields, picks it up, returns. And a couple of runs for the Netherlands team. They go up to 63 for 2 midway of the 10th over. And 147 from 63. That's a massive ask. Callis, she's an 8 from 7. And D lead, the captain, 16 from 14. And to turn it around from here is next to impossible, as a matter of fact. It's an amazing stadium, the Leeds, and it's got its own stories, history. Plenty of games played. Next ball short, she cuts, beautiful short indeed. She made some room and played it beautifully. Square of the wicket, one of the good shots of the evening. It's gone for 4. Ye laga, abha ka choka. There was so much of class in the shot from D. Lead. She rocked onto the back foot and played it for square. There was a bit of turn and comfortable bounce to play the shot of the back foot. It's gone for 4. That's a third boundary. I could see her. She's so good with her footwork. She's nimble-footed. And she's very fast down the track or playing off the back foot. 2 for 67. India 94 at the time. Next ball is driven around the wickets as Deepthi started bowling around the wickets, in fact, rather. Down to long on. It's 2 for 68 from 9.5 overs. And still, I would say it's a decent score when you put up 65, 70-odd runs inside the 10 overs. And here's Deepthi, the last time, comes and throws this one nicely, and the batter played from the crease without any foot movement, and it goes through to the keeper. A dot ball to India. 10 overs gone, 2 for 68.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय कश्मकश जारी है गेंद और बल्ले के बीच में, और देखना है कि नीदरलैंड्स की ये पारी कहां तक जा पाती है। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है इस समय। दीप्ति शर्मा बहुत ही स्टार गेंदबाज हैं भारत की तरफ से। पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, सबको चकित कर दिया था। भारत ने 209 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में बनाए थे। 10 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, यानी नीदरलैंड्स अपना आधा सफर पूरा कर चुकी है, लेकिन उनका रन का जो खाता है अभी 68 रन पे अटका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे थे, हीथर सीजर्स 2 रन पहले आउट हुई थी, उसके बाद मॉल्केन बोर आउट हुई थी। सीजर्स ने 21 और मॉल्केन बोर ने 15 रन बनाए थे। इस समय स्टीव कैलिस मैदान में खेल रही हैं। क्रांति गौड़ को लाया गया है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गई और गेंद को स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: कीर्ति गौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी उनकी और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। बल्लेबाज ने मौका तोड़ा और गेंद को धीरे से कट कर दिया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। इस समय क्रांति गौड़ से बातचीत कर रही हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनको समझा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा बनाए रखनी है, और दोनों बैटर्स कहना होगा बहुत अच्छा खेल इस समय दिखा रहे हैं। लीड खेल रही हैं 16 रन पर और कैलिश खेल रही हैं 17 पर सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस गेंद को धीरे से पुश किया था मिड विकेट की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन और लीड ने अपने खाते में जोड़ा। उनका स्कोर कैलिश ने अपने खाते में जोड़ा 18।

0: रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। लीड का स्कोर इस समय है 16 रन 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बैबेट डी लीड कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर की को आकर बहुत देर तक जमने के लिए गेंदों को देखना नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद को धीरे से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ड्राइव कट किया है और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: लेग स्टंप के बाहर ठीर गेंद को धीरे से उन्होंने हवा में थी, हालांकि फील्डर जो खड़ी थी शॉर्ट फाइन लेग पर, उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, पुश भर किया था गेंद को अपने बल्ले से और फील्डर के हाथ में तो नहीं आई, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर चली गई। लीड इसके साथ ही 20 रन पे जा पहुंची, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसने अच्छी गेंद थी, इस बार एक कदम आगे बढ़ी, धीरे से गेंद को पैड के साथ खेली थी, लेकिन इसके साथ ही रन लेने का कोई मौका वहां पर लीड को नहीं मिला।

0: from 50 deliveries and the game is just getting beyond the reach. Rich Keane strike. Takes card from the umpire. And she goes for the reverse sweep. We're not swinging the reverse sweep in the whole game. This is going down towards the third man area and that's gone away for four. A smart bit of cricket indeed. And a lot of scoops been played, the sweep been played, and the first time I'm swinging a reverse sweep and played to effect. And it fetches her four more runs and she's up to five. And a welcome boundary here for the Netherlands. And well, cricket time is a very funny game. She's on 5 from 2, 83 for 3 in the 12th over, 127 needed. Shuffle in the field from Harmanpreet Kaur. No reinforcement on the offside within the 30-yard circle. 4 inside the circle, next ball. She's up and defending, back to the bowler. A very proper defensive push back to the bowler. Brings the over to an end. 12 over is gone. It's 3 down for 83.
1: 12 ओवर की समाप्ति पर 83 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है नीदरलैंड्स की टीम, लेकिन जैसे जैसे ओवर्स बीतते जा रहे हैं मैच भारत की पकड़ में आता जा रहा है और नीदरलैंड्स से दूर जाता जा रहा है। मात्र 8 ओवर का खेल अब शेष रहा है और 15 से अधिक रन अगर प्रति ओवर बनाने की क्षमता है नीदरलैंड्स की तब तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर आज की परिस्थिति में अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो नीदरलैंड्स की टीम अब थोड़ी सी परेशानी में। 6.92 की उनकी गति है जबकि उनको चाहिए 15.88। इस बीच क्रांति की पहली गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड में। बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का घेर की पट्टी को पार किया। एक रन उनके खाते में जुड़ा है और इसके साथ ही स्कोर हो गया 83 रन। इस बीच 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे चुके हैं कि दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में खेला जाएगा। इस बीच ये गेंद हवा में ऊपर है, देखना है फील्डर इसके नीचे है या नहीं, लेकिन बहुत ही थोड़े से अंतराल से बच गई, वो बाल बाल बची। वहाँ पर स्मृति खड़ी थी, गेंद की तरफ लपकी थी लेकिन गेंद उनके हाथ पे नहीं आई। डी लीड 21 रन पर सामना करेंगी जबकि रिस्क क्या स्कोर हो गया 6 रन बगैर किसी नुकसान के। 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर के खेल पर और 125 रन अभी भी चाहिए नीदरलैंड्स को इस मैच में पार पाने के लिए। 46 बॉल में गेंदों पर बहुत मुश्किल काम। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करना चाहती थी, हालांकि पीछे विकेट कीपर अपील की मुद्रा में है लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन और इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन एक लेग बाई से मिला था पहली गेंद पर, उसके बाद में एक रन बल्लेबाजी में मिला था और उसके बाद में ये वाइड गेंद करार दी गई। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर। कप्तान बबेट डी लीट इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं रिस्क। इस बीच एक गेंद को पुश किया था लीड ने और एक रन अपने खाते में जोड़ा। 22 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। भारत ने आज अफगानिस्तान के विरुद्ध सेकेंड जो मैच खेला था 170 रन से जीता है भारत ने और ये सूचना हमारी श्रोताओं को दी जा रही है कि आज जो मैच खेला गया था लखनऊ में दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था और उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रन के बड़े अंतर से अफगानिस्तान को पराजित किया है। 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स के में खेला जा रहा T20 विश्व कप का ये मैच। एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ खेला, एक रन और जोड़ा है 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है और अगर उनको प्रति ओवर 16.50 रन की दरकार है जो कि बहुत ही मुश्किल काम है नीदरलैंड्स के लिए। और इस बीच क्रांति की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया था।

0: 26 for 4. And well, it's been, you know, Goswami, a one-sided affair. You know, the moment they won the toss and preferred to bat first. To my surprise, they should have batted first, I feel, and put some score and defend the target. They did well against New Zealand. They did well against Netherlands in the first game. But this Indian side is pretty strong, both with bat and ball, and tons of experience behind them, and so much of cricket they play continuously and consistently. And there's some potential matchmakers in the side, the guys who can turn around quickly, and there are some players who can change the course of the game in few overs, someone like Richa Ghosh or Smriti Mandhana. She's such a wonderful player to watch, and a very gifted left-hander. It's been India's day so far. The men team have proven their mettle. They won the game against Afghanistan by 170 runs. And the women's team is not far away. That one is a 50-over match, and the one that we're doing is a 20-over game. And June has been a month flooded with variety of sports: tennis, football, variety of T20, 50-50 test matches going on. England are playing New Zealand today with 220 for 5. New Zealand some time back. No Stokes in that game. He's got his own problems beyond the playing hours. Unfortunately, it's Root leading England after a long gap, and he's playing his 167 test match. Would you believe? He's playing 167 test match, and the rest of the other England side all put together 114. But a wonderful cricketer. Fancy him to get past Tendulkar somewhere down the line. He's got 3 or 4 years of cricket left with his bat. So right now, back here in Leeds, India on the way. They're in complete command of this game, and Netherlands probably haven't batted badly, but they're learning, continue to learn as the game goes on, the months and years to come. And they probably, at some point of time, in the next 10 years' time, they'll be a strong contender in the T20 format, as a matter of fact. So right now, new player is going to step into the centre. Play briefly held there with the exit of the captain, who's been stumped smartly by Ghosh, and off the bowling of Nandini, and one casualty in the inside with Patil. The off spinner, you know, just bowled one ball, and she had a nasty fall. She slipped, and she suffered an ankle injury. Say, Overdick. She's the new batter in, and the batter at the other side is Richke. Netherlands 96 for 4, one ball to go in the 15th over, and the target they're chasing now looks very unrealistic. 210. Nandini with the last ball of her third over, bowls fuller and lifted in the air, wide of Minon. It'll be cut off by Jemima Roderick. She does well to cover, have to run 15 metres. Couple of runs here, and after 14 overs, Netherlands a 4 for 98.
1: 14 ओवर की समाप्ति पर 98 रन पर 4 विकेट इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है, जो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। हीथ सीजर्स, कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकन बोर्ड, कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स, बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन, बबेट डेलीट, स्टंप ऋचा घोष, बोल्ड नंदी शर्मा 28 रन, और स्टीव कैलिस, जिनको सैफ अली ने बोल्ड किया था 18 रन के स्कोर पर। और इस समय 4 विकेट जो गेंदबाजी का सिलसिला है, नंदी शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए, शेफाली वर्मा ने 3 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया है, और पाटिल जैसा कि इंजर्ड होके चली गई थी, एक गेंद फेंकी थी, श्री चंडी ने 2 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं, और दीप्ति शर्मा ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की। तो इस समय नीदरलैंड जूझ रही है भारतीय आक्रमण के समक्ष। 14 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, डिसीजन को रिव्यू किया गया है, देखना है, अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है, और तीसरे अंपायर अब टीवी पर देखकर, टीवी अंपायर लॉरेन एगेन बैग टीवी अंपायर की भूमिका इस मैच में निभा रही हैं। और डिसीजन जिस तरह से आपको हम निरंतर बता रहे हैं कि गेंद को स्वीप करना चाहा था और गेंद उनके बूट पे लगी है, देखना है गेंद बैठ के कहीं किसी किनारे, भीतरी किनारे से तो नहीं लगी, यही देखना है। और अगर नहीं लगी तो फिर उसकी क्या दिशा रही है, क्या गेंद स्टंप्स को छूकर निकल रही है या स्टंप्स के पास से निकल रही है, इन्हीं सब बातों का एक चिंतन होता है। और तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय किया जाता है। क्रिकेट में जब से रिव्यू सिस्टम आया है, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब बेहतरीन बल्लेबाज कई बार गलत तरीके से आउट दे दिए जाते थे, लेकिन बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सी

0: चीज़ निकलती रहती थी, लेकिन फिलहाल देखना है कि अब जाके पूरी तरह से संतुष्ट। मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई है, लेकिन देखना है कि क्या निर्णय होता है। अंपायर ने अपना निर्णय दिया, आउट हो गए हैं बैटर, और ये अंपायर की उंगली उठी। इसके साथ ही रिज की पारी यहीं पर समाप्त हुई और एक और करारा छक्का लगा है। रॉबिन रिस्क 8 रन पर आउट हुए हैं। LBW बोल्ड श्री चरणी, उन्होंने मात्र 3 डॉट गेंद बनाई, 1 रन उनके खाते में जुड़ा, और इस तरह से दक्षिण नीदरलैंड्स को एक और करारा छटका लगा है। और देखा जाए तो एक तरफा मैच होता हुआ विश्वनाथ ही नजर आ रहा है कि किस तरह से पहले टॉस जीतने के बाद एक मौका मिला था कि वो बल्लेबाजी करती, लेकिन उन्होंने बेटर समझा, उचित समझा ये कि हम पहले गेंदबाजी करें। भारत ने 209 रन का स्कोर उनके समक्ष दिया है।
1: Well, at times I probably will say it's a match of the unequals, isn't it? One of the top-ranked team playing a team which is new entrant and a long way to go. Charney bowls and driven towards long off for a single. She's off the mark, Zwilling. She bowled well indeed, and takes Netherlands up to 99 for 5.
0: Zwilling ने अपना खाता खोला है, एक रन लिया है। जिस तरह से पिछली गेंद पर आउट हुआ था, अंपायर ने एक और आउट नहीं दिया, लेकिन रिव्यू दिया और उस पर भारत को सफलता मिली। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है। ओवर डिस्क इस समय 2 रन के स्कोर पर खेल रही हैं। Zwilling ने 1 रन बनाया है और अब 111 रन पीछे है अभी भी नीदरलैंड्स की टीम भारत के मुकाबले, जबकि 34 गेंदों का खेल शेष रहा है। बहुत ही मुश्किल, कोई चमत्कार ही हो तो अलग बात है। इस बीच ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, गुड लेंथ गेंद थी। एक बार फिर से श्री चरणी को सफलता मिली कि उन्होंने मौका नहीं दिया बैटर को रन लेने के लिए। ओवर डिस्क इस समय खेल रहे हैं 2 रन के स्कोर पर, और एक बार फिर से श्री चरणी गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव करना चाहती सीधा, लेकिन गेंद बन लेके बाहरी किनारे से लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: एक चौके से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ये मैच अब भारत की पकड़ पे मैं आ चुका है। श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी, और अंपायर ने हालांकि उसको आउट नहीं दिया था, लेकिन बाद में रिव्यू लेने पर उनको सफलता मिली। इस बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, और इससे पहले कि गेंद फील्ड की जाती, थ्रो किया जाता, 1 रन और उन्होंने अपने खाते में जोड़ा। हालांकि मिस फील्ड हुई, 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है, और 1 गेंद अभी भी शेष है श्री चरणी के इस ओवर की। 14.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। नीदरलैंड्स के बल्ले से अभी तक 104 रन निकले हैं, 5 विकेट का नुकसान उनको हो चुका है, आधी टीम उनके आउट होकर पेविलियन लौट चुकी है, और भारत के लिए ये एक आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी इस समय की जा रही है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को धीरे से पुश किया स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ, और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, 1 रन और जोड़ लिया। 106 रन 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है नीदरलैंड्स का।
1: So the game has gone one-sided, isn't it? Last 5 is coming up, and it's certainly out of reach now. The ask is around about 20 runs an over, so we don't see any of the best of the IPL games. And 209 in reply after 15 overs, 105 for 5. So Dee Lange, she bowled well. She bowled 4 overs for 32. And she was the best of the ball. She had 2 wickets in the game against Bangladesh too. She bowled 4 overs 2 for 27, isn't it? In that game. It's going to be Deepti Sharma to bowl her 3rd ever flight, this one. And it's lifted in the air, safe. It'll fall safe with the fielder, Mandana, at deep mid-wicket. In fact, it's not Mandana, I can tell you that. It's Radha. She fields in and sends in the return 106 for 5. And the last 4 overs and 5 deliveries coming up to complete the formalities of this game, as they need 104 from 29. And Frederick Erdick, she's the one playing

0: Patricia Mack. She comes in from close to some bowls and she slocks the feet of this man, not with much power and timing. Again, Mandana in business, correction, Rada in business. And one more to the Netherlands team. They go up to 107 for 5. But I tell you, by all means, for a team like Netherlands, you know, this is a good, massive experience for them. One is to qualify for the World Cup. They'll be very happy if they win one game in these qualifying matches. Next ball is defended up to short mid wicket. Mandana, obviously, rather cowering for Harmanpreet Kaur. She's the fielder. And Mandana probably will be strong contender for the player of the match in this game. And the game has been a bit disappointing in the second half, I can tell you. The first half was more entertaining and enterprising. Next ball, she gets a thick outside edge. She's going down towards no women's land. And they run just a single. It was not timed. A thick edge that went sailing in the air and fell between mid-on and deep mid-wicket. You could cross her for an easy single. So that takes in Netherlands up to 108 for 1. Three singles in this over. Deepthi's having a nice little time. She tosses this one nicely. Again, slog swept, not with any timing. So these swipes, it's been looking very ugly, isn't it? These lock sweeps isn't been as elegant as it has been. And most international wickets now is now Deepthi from India sharing with Goswami, 355. Magic figure indeed. Next ball, she's lifted this one high, ever long gone, and it's gone for 4. Ye laga abha ka choka. Well, that's a welcome boundary from a Netherlands team point of view. 42-4 in this game so far, and at the end of 16 overs, it's 5 down for 113. Winning is out of equation now, Goswami, and I'm sure they're going to play for pride. They're going to play with a lot of passion. And they're probably trying to narrow the gap and settle somewhere between 150 to 160 if all their wickets remain intact from a Netherlands point of view. But they'll be very happy if they win one game in the league games of this World Cup before they leave back for Netherlands.
1: 16 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर उठा दिया. इस गेंद को देखना है कि इसके पीछे फील्डर है कि नहीं, और इसके साथ ये कैच बहुत ही शानदार तरीके से एक और विकेट मिला है श्री चरणी को. और जिस तरह से श्री चरणी ने अपने ओवर की शुरुआत की थी और गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट किया था, बल्लेबाज को आमंत्रित किया था, स्मृति मंधाना ने एक कैच और पकड़ा है. स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और उसे उठा दिया था बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाई शॉट को. स्मृति मंधाना वहाँ पर खड़ी थी और एक शानदार कैच पकड़ते हुए इस बार एक और फ्रेडरिक ओवर डिस्क ने मात्र 9 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया. कॉट स्मृति बोल्ड श्री चरणी 7 रन. इस समय छठा विकेट आउट हो गया है, 6 विकेट गिर चुके हैं और अब पूरी तरह से दर्शकों में भी उत्साह, तिरंगा लहरा रहा है मैदान में वहां पर. और निरंतर इंग्लैंड की धरती पर जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी निवास करते हैं, ऐसे किसी भी मैच को वो से मैदान पे ज़रूर आते हैं. 97 रन की अभी भी ज़रूरत है नीदरलैंड्स को, लेकिन अब ओवर बहुत ही कम बचे हैं. एक तरह से मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है और अब राड आए हैं अगली बल्लेबाज के रूप में. अच्छी गेंदती अंपायर की तरफ से, एसआरआरएस के साथ ही आउट, एक और विकेट मिला है. श्री चरणी ने इस गेंद को थोड़ा सा हवा में फ्लाइट किया था और DRS लिया है वहाँ पर. बल्लेबाज ने देखा कि जैसे ही उनको लगा कि कहीं उनका किनारा नहीं लगा है, श्री चरणी की गेंद को कट करना चाहती थी, लेकिन बॉल ने उनके बल्ले का एक बाहरी किनारा लिया या नहीं लिया, यह अब DRS के ज़रिए तय होगा. लेकिन भारत के खेमे में उत्साह, क्योंकि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी थी. और अब देखना है कि बहुत नज़दीकी मामला है, उनकी बैट से लगी या नहीं, यहाँ से देखने पर तीसरे अंपायर के पाले में गेंद गई है अब. और जो मूल निर्णय है वो आउट का है अंपायर की तरफ से, और देखना है कि गेंद बल्ले से टकराई या नहीं. लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे ऋचा घोष ने लिया है, और अगर ये परिणाम में बदलता है तो एक और विकेट नीदरलैंड का गिर जाएगा. बैट से

0: टकराई है और अंपायर ने अब जाके अपने निर्णय को वापस बरकरार रखा है और अंपायर ने दूसरी बार तीसरे अंपायर की सलाह पर अपनी देखते हैं उंगली उठाई या नहीं, लेकिन लेकिन बैटर पेवेलियन की तरफ लौट रही हैं और धीरे धीरे कदमों से लौट रही हैं। अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से निर्णय को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा की गति से जब गेंद निकलती है कई बार तो ऐसा लगता है कि बैट से लगा है, लेकिन विकेट कीपर ऋचा घोष को पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था और अब जाके निर्णय अंपायर का उंगली ऊपर उठी और राड जो कि शून्य पर आउट होकर पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया और सातवां विकेट नीदरलैंड्स का गिर चुका है और अब सीजर्स आई हैं बीच मैदान पर और ये श्रीचरणी लगातार दो विकेट ले चुकी हैं, हैट्रिक पर हैं। देखना है अगर वो ये कमाल कर पाती हैं कि एक विकेट और वो अगर अगली गेंद पर लेती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर जुड़ जाएगी। 16.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है और अब कितने रन की आवश्यकता है सवाल यह नहीं है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत कितनी जल्दी इस मैच पर विजय प्राप्त करती है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया था लेकिन गेंद मैदान पर लुढ़कती हुई जा रही थी, गेंद को फील्ड किया, एक रन और खाते में जोड़ा है। सीजर्स ने अपना खाता खोल लिया है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष हैं और श्रीचरणी अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कितना कुछ कर पाती हैं। सीजर्स ने 24 पारियों में 69 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कोई उनकी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही है और 20 गेंदों का खेल अब शेष रहा है, 96 रन की दरकार है जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय दर्शकों में अपार उत्साह, तिरंगा झंडा भी फहराया जा रहा है, शोर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही ये गेंद को खेला था लेकिन गेंद टप्पे के साथ उछली थी हवा में और विकेट के बीच में आके उसको अपने हाथों में लिया था श्रीचरणी ने। ऐसा लगा था यहाँ पर दर्शकों को कि कोई कैच है लेकिन क्योंकि बैट्समैन ने बहुत सुरक्षित तरीके से खेला था। अगली गेंद अच्छी और इस गेंद को उठा दिया है, देखना है गेंद बाउंड्री में क्या पार, जिसके साथ ही आउट। एक और विकेट गिर चुका है श्रीचरणी की इस ओवर में। देखा जाए तो 3 विकेट उन्होंने ज़रूर लिए हैं लेकिन लगातार 3 विकेट लेते तो हैट्रिक होता, लेकिन इस ओवर में सफलतम 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर और बहुत ही सफल ओवर जिसमें 3 विकेट उन्होंने श्रीचरणी ने लिए हैं और एक तरह से बहुत ही शानदार जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि लॉन्ग पोजीशन पर फील्डिंग करती हैं उन्होंने कैच किया। आयरिस ज्वेलिंग 8 रन पर आउट हुई है, कॉट जेमिमा बोल्ड श्रीचरणी और 114 रन 17 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। विश्वनाथ,
1: वेल इट्स अ ट्रिपल विकेट ओवर इंडीड, रिमार्केबल फॉर हर एंड शी इज गॉट फिगर्स ऑफ 4 for 19 फ्रॉम 4 एवर्स। श्रीचरणी शी इज हैविंग अ वंडरफुल टाइम विद द बॉल, 4 for 19 फ्रॉम 4, वेरी इकोनॉमिकल एंड कंप्लीट ग्रिप ऑन दिस गेम फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। Just the last 3 years to complete the formalities and 2 wickets in hand, and Shefali Verma will bowl her last over, if I'm not wrong. No, yeah, that's right. In fact, first ball, she tries to whack it on the onside. They're all appealing for a stumping. It was so well collected by Richa, and she got the bails broken in a flash. It's been referred to the third umpire. It's been given out indeed. It's been given out. It wasn't a late decision by the umpire. Or he had some kind of a thing coming up from third umpire. I'm very stunned actually. I've never seen anyone taking such a long time to give that out. Stumped, the second stumping of the game. And that's out, in fact. I could pick it up from the replay. And the right leg was in the air. Smiles in the Indian camp. Flurry of wickets have fallen in the last 7. Netherlands have lost 4 wickets in the last 7 deliveries. And Silver Sieges, stumped by Richard off the bowling of Shefali Verma. She gets a second wicket and she's got figures of 3 overs, 2 for 20. It should be effectively 3.1. She bowled the last 5 balls.

0: There's still a lot of scope to get better and better till you play the next set of matches.
1: Indeed. You mentioned about Shaif Ali being absolutely wonderful down on the ground with those shots as well. The efficacy of Shaif Ali with the bat in hand just cannot be questioned. Lekin Shaif Ali, jo gendbazi mein unhone aaj damkham dikhaya, jo unko third over mila tha, Harman ne jab unko ball thamaya tha, उनके कैप्टेंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके फलस्वरूप में विकेट भी मिला था शेफ अली को।
2: शेफ अली वर्मा सिर्फ यही नहीं, वो आप कहीं भी देखेंगे कि इंडियन टीम के इंडिया ए टीम में भी वो बॉलिंग करती है एंड वहाँ पर भी वो इसी तरह का एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और वहीं से वो कॉन्फिडेंस यहाँ इंडियन टीम में उनके लिए बिल्ड होके आया है एंड जो आज उन्होंने बॉल डाली है उस पर उन्होंने उनको रीड करना इतना इजी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ एक ही वेरिएशन में बॉल नहीं डालती है, वो दो वेरिएशन में बॉल डालती है, एक वो ऑफ स्पिन डालती है, एक वो टॉप स्पिन भी डालती है, तो उसमें डिफरेंस है दोनों में। टॉप स्पिन में थोड़ा सा बैटर को डिफिकल्टी होती है जज करने में एज कम्पेयर टू ऑफ स्पिन। सो उसमें जब उनको बॉल विकेट मिली थी तो वो उन्होंने टॉप स्पिन करके बॉल डाली थी एंड वो हल्का सा हम कह सकते हैं कि स्लाइटली उनको एक टर्न मिला था उस टाइम।
0: I just want to add to what she said by Sally ki, you know, it reminds me of Sachin Tendulkar the bowler. Ki exactly same kind of run up, more or less the same kind of build up ne dekha hoga, and you know, he could do anything with the ball. He could leg spin, off spin,
1: right,
0: flippers, God knows what. I've seen him play in Hero Cup finals. Uh-huh. And he would get wickets, and sometimes the match-winning wickets would always go by Sachin, I think. But yes, I'm not comparing Sachin and Shaif Ali, but
1: it's still big praise.
0: Yeah, lot of praise that, you know, she can do a lot of things with the ball, and that's why Harmanpreet would often go back when, you know, when Patil was injured and she left, she filled over, I think, and she did a pretty good job.
3: Talking about finals, well, Shaif Ali did get wickets for India in the ODI World Cup final as well. In the meanwhile, in our show, there's time for our listeners to chip in with their questions and comments. Remind you, our numbers are 011-234-21084 and 1085. Abhi jo pehle shrota jude hain, unse baat karte hain. Namaskar.
4: Namaste, madam.
3: Ji, apna parichay dijiye.
4: Main Haseena ki matri, to main Palghar ka Indore se.
3: हसीना जी, क्या सवाल है आपका?
4: सवाल कुछ नहीं, मैं बधाई देना चाहती हूँ आप लोग समझ लें, उसके वजह से महिला की भूख ध्यान से बोलते हूँ, खाना पीना छोड़ देते हैं आखिरी का ओवर तक, और वंदना की मरीज जी के आपका कमेंट्री बहुत ध्यान से सुन रही है।
3: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा को इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं। तो श्रेयंका पाटिल के एब्सेंस को फिल किया जरूर शेफ अली ने, लेकिन श्रेयंका को जो इंजरी हुई अभी जो दिख रहा था और जो हमने सुना, काफ़ी प्रॉब्लम में दिखी वो एंकल उनका।
0: Yeah, definitely. She one of the lead bowlers and the point is, but we have backup. ये नहीं कि हमारे पास बैकअप नहीं है, we have enough backup. But we'll always expect that, you know, she comes back fit and fine and the bench remains as strong as ever. But that we'll only know after the reports come out later in the day.
1: हमारे लिसनर्स के पास दिव्य दृष्टि तो है, किसी ने सवाल पूछा था किसी ने कि
0: राधा यादव
1: कहाँ हैं, कहाँ क्या कर रही हैं, उन्हें सदस्य रहना चाहिए था 11 की, अब बन सकती हैं क्योंकि श्रेयंका इज नर्सिंग एन इंजरी, बट इट्स गुड न्यूज फॉर इंडिया यू थिंक वैशाली, बिकॉज इवन दो श्रेयंका माइट मिस आउट ऑन एक्शन, श्री चरणी इज डूइंग वेल, शी इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द साइड।
2: या राइट, एंड उसके साथ अभी जैसे आपने राधा यादव की बात की है, उसमें एक बेनिफिट और मिल गया हमें कि श्रेयंका पाटिल के पास उतनी बेटर बैटिंग नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक अगर उनका रिकॉर्ड देखे पेपर्स पे तो उनका सिर्फ एक ही 50 उनके बैट से, एंड राधा यादव के पास काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ साथ बैटिंग का लाइनअप भी है, तो वो चीज़ मैटर करती है और वो बेनिफिट दे सकती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट।
1: इंडीड, जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं यू वॉन्ट द पीपल विद गुड एक्सपीरियंस एज वेल टू बी आउट देयर, because sometimes you're not just playing the ball but the reputation too.
3: Absolutely. और इसके साथ वक्त हो चला है कि हम कप्तानों को सुने और उनकी क्या रणनीति रही थी, उनका क्या विश्लेषण है, उसके बारे में जाने।
5: I think India batted really well, especially up front. I think we had a great comeback with the ball, because I think there were 100 after 10 overs and only scoring 210. I think on this flat wicket, I think we had a chance. We didn't quite get it right.
6: The catching, at least 4 catches going down, is that something that you had higher expectations of?
5: Yeah, I think our fielding can be a little bit

0: that we have won two matches and looking good. Our bowlers have come to the party, especially the spinners in both the matches. I think in the first match it was Deepthi and Charani, and here C. Charani, and the rest of the bowlers bowled around them. So yes, sometimes bowlers have good days and bad days, especially in T20s, can be very, very heartbreaking.
1: Right.
0: You know, we've seen so many the top world-class bowlers getting blasted all over during IPL. So it really is, T20 is really a batsman's game, really.
1: True. Colonel, and you wanted some resistance from the Netherlands, right? I know you want to get a word in the edgeways. You wanted some resistance, and the leader's unorthodox shots, was that kind of resistance?
2: No, I think they play like that only. Okay. If you see the Bangladesh match also, the batters were playing the way they played today.
1: Right.
2: And that is how they get their runs. But they'll start playing better when they start playing with teams like India, Australia and others. So they gain experience. And you will find in the next World Cup, they'll play much better.
3: And that's exactly the opportunity that this World Cup presents to them. And now our attention turns to the game that India would be playing against South Africa. But before that, South Africa in some time from now would be up against Pakistan. South Africa, remind you, are coming on the back of 65 runs loss against Australia. So their net run rate has taken a beating. They try to compensate for that. Vaishali, abhi South Africa ka agla mukabla khela jana hai, lekin Bharat aur South Africa ke us mukable mein kya kuch aap umeed rakhti hain?
4: मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि पहले हमारी जैसे आज पार्टनरशिप हुई है शेफाली वर्मा एंड स्मृति की, वही सेम उस तरीके की पार्टनरशिप देखने को मिले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि पावर प्ले का अगर ओपनर्स नहीं फ़ायदा उठाएंगे तो हम मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से वो रन रेट आगे बढ़ सकता है. क्योंकि पार्टनरशिप इतनी इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग द 10-6 ओवर्स के अंदर. क्यों, आपका जो पीछे वाले बैट्समैन है वो आप पे निर्भर है. आप अगर पहले ही बाहर चले जाओगे तो उनको एक माइंडसेट होता है, वो ये सोचते हैं कि सामने वाला अगर इतनी जल्दी आउट हो गया तो क्या बॉल इतनी आउटस्टैंडिंग आ रही है और क्या पिच में कुछ डिफरेंस है, तो ये मैटर करता है. एंड हमें उस तरह का माइंडसेट भी बनाना पड़ता है.
1: इंडीड, एंड there's a listener waiting for us to join him. Let's go to him.
3: हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अपना परिचय दीजिए.
5: हाँ नमस्ते मैडम.
3: नमस्ते, अपना नाम बताइए.
5: मैं आपका परिचय दे दूँ?
3: जी.
5: पालघाना का इंदौर से मोहम्मद अफ़ज़ल मंसूरी बोल रहा हूँ.
3: क्या सवाल?
5: मैं महिला टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ और शुभकामनाएं देना चाहूँ कि आगे भी इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीते, जैसा 50 का जीता था जिसका भी जीते. और मैं कहना चाहूंगा कि जो 50 ओवर फाइनल जो खिलाया गया था उसी तरह से आगे भी मजबूत जाने वो खिलाया जाए, तो हमारे जो कमजोर पर जो
3: जी. धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए. द सेम रूथलेसनेस इज वॉट आर लिसनर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन टीम. साउथ अफ्रीका दो हैव सम इश्यूज, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन बीइंग देन नंबर 3 पोजीशन. व्हिच बैटर इज बेस्ट फिट फॉर दैट पोजीशन?
0: डिफिकल्ट टू से विच बैटर, बट द पॉइंट इज दिस, द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका विल बी एन एंटायरली डिफरेंट कप ऑफ टी. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, इफ यू डोंट फॉरगेट दिस इज द सेम टीम दैट वी प्लेड इन द 50 ओवर क्रिकेट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज समथिंग दैट दिस कॉलर ऑल्सो मेंशन. द इंटेंसिटी ऑफ दैट मैच विल बी एन एंटायरली डिफरेंट लेवल, एंड दे हैव सो मेनी मैच विनर्स स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कैप्टन. सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नंबर 3 और नंबर 4, इज अ क्वेश्चन ऑफ योर माइंड सेट गोइंग इन टू अ बिग मैच, राइट? टुडे इफ दे कैन बीट पाकिस्तान, अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को बर्मिंगहम में विन, बिग बूस्ट अहेड ऑफ दिस मैच. But the point is this, against a match against South Africa, Australia, I mean, the dressing room, in the Indian dressing room, their thinking will be completely different. They will forget what they have done against, you know, Pakistan or Netherlands. Yeah. So the, and don't think that they are a world beating side. They're a very good side, and they, and many of their cricketers play cricket in these kind of regions and are familiar with the conditions. Similarly, if you see, not many Indian cricketers actually are used to these conditions.
1: Right.
0: Because you see, Smriti Mandhana said something very interesting, that she played the 100. Okay, so these kind of conditions actually help them prepare better. That's why. Why do you think that Smriti Mandhana is not happy with her 250s? Is because she knows that the next set of matches will be very, very crucial, and if she can't middle the ball, bat agar balla mein nahi laga, that feel good factor is not there. The runs will not come because the bowling from South Africa will be very, very tough.
1: Right, I think that
2: a lot will depend on the type of wicket that is provided.

0: And in case it is a slightly spinning wicket, we have a good chance of beating South Africa.
1: All right, because Lees will also be waiting to rip the ball. So Shabnam Ismail is again someone who's quick when there's a little bit offerings from the surface. Now let's go to our listener. Ji, aap kahan se call kar rahe hain? Bataiye, aapka parichay dijiye.
2: हाँ जी आदाब नमस्कार
1: नमस्कार
2: जी मैं मुस्तकीम उदा बोल रहा हूँ गुजरात से
1: जी बताइए आपका सवाल क्या है
2: जी पहले तो भारत मैच जीता बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को और ऐसे ही आगे भी जीतते रहे बहुत ही उम्दा प्रदर्शन टीम का
1: शुक्रिया सर
2: और एक हमारे खिलाड़ी आज इंजर्ड हो गई तो क्या उसकी आगे कमी खलेगी
1: राइट श्रियंका पाटिल के इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं
2: रेडियो पे दे रहे हैं हेलो सर
1: जी बताइए
2: हेलो आप रेडियो पे कमेंट्री दे रहे हैं हम आपके शुक्रगुजार हैं लोकल रेडियो स्टेशन तमाम रेडियो पे कमेंट्री आ रहे हैं मीडियम में भी उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं
1: बहुत बहुत शुक्रिया और नहीं बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे लुत्फ उठाते रहे हम यही उम्मीद करेंगे वैशाली आप

0: पाटिल के इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं।
1: रेडियो पे दे रहे हैं। हेलो सर
0: जी, बताइए।
1: हेलो, आप रेडियो पे कमेंट्री दे रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लोकल रेडियो स्टेशन तमाम रेडियो पे कमेंट्री आ रहे हैं मीडियम में भी, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे लुत्फ उठाते रहें हम यही उम्मीद करेंगे। वैशाली, आपसे रहेगा ये सवाल फिर कि श्रियंका पाटिल की कमी क्या खलेगी अब इंडिया को?
2: कहने के लिए खल सकती है, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है अभी राधा यादव, एंड वो बेटर फील्डर भी हैं। जैसे मैंने बोला कि बैटिंग भी करती हैं वो, तो हमारे पास उसे उनसे थोड़ा सा बेटर राधा यादव है, एंड वो इम्प्रूव भी कर रही हैं। उनकी हम देखें तो उनकी बैटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है, एंड बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेटर एंड क्रिप के साथ जो बॉल डालती है तो वो काफ़ी अनप्लेएबल बॉल होती है। एंड अगर हम बात करूँ बैटिंग के लाइनअप की, जो अभी आप बात कर रहे थे थर्ड डाउन की, बट हमारे पास मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, और वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए हम उनके अगेंस्ट जब खेलेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अभी दो लास्ट टू मैचेस से दिख नहीं रहा है, नॉट इवन नॉट लास्ट मैच, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पर यास्तिका भाटिया या भारती की जगह जो भी खेलता है नेक्स्ट मैच में, उनकी जगह पर हरमन का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है आफ्टर जैमी।
3: बिल्कुल, और हमने देखा है कि भारत जब विकेट्स लूज करता है तो वो क्लस्टर में लूज करता है, खास करके मिडिल ऑर्डर में। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज गवाई थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 4-1 से उस श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को। अभी कंडीशंस काफ़ी अलग होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम नेट रन रेट में काफ़ी पीछे। भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबलों को बहुत अच्छे से भुनाया है इस वर्चुअल नॉकआउट से पहले। वो
4: नहीं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, दोनों जो मैच जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली हमने जीत लिए हैं। एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न्ड, उनका अभी शबनम इस्माइल हैज जस्ट कम बैक इनटू द टीम फ्रॉम रिटायरमेंट, सो दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज शी इज़ बॉलिंग क्वाइट वेल, शी प्लेज इन द WPL, शी नोज ऑल आर बैट्समैन बैट्सवुमन। सो मेरे को लगता है कि अगर हम शुरू के जो हमारे जो बैटर्स हैं वो 6 ओवर निकाल लें आराम से विदाउट लूजिंग मोर देन 1 विकेट, then we can get a good score against South Africa and then put them under pressure with our bowling. Bowling is quite good as far as the spinners are concerned.
3: Absolutely, और वॉलफार्ट शानदार फॉर्म में है, पिछले साल विश्व कप में 50 ओवर के विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, और अभी भी रन बनाने की मशीन बनी हुई है।
5: Quality batsman है, देखिए pedigree जो है ना वो आपको दिखेगा regardless कि कौन format में white ball खेल रहे या red ball। देखिए मंदाना, हरमनप्रीत, मिताली राज पहले थे, तो दे हैव क्वालिटी, और क्वालिटी जिस बैट्समैन में पेडिग्री और क्वालिटी है दे कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट ऑफ द, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग कि नंबर 3 में कौन बैट करना चाहिए, राइट, बिकॉज टुडे यास्तिका डिड नॉट गेट द रन्स एज डिजायर्ड, बट दीस काइंड ऑफ मैचेस आर वेरी वेरी क्रूशियल। देयर नोबडी विल लुक नॉट लुक एट रन रेट्स, दे विल लुक एट विक्ट्री, 2 points, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू गो विद अ प्रॉपर माइंडसेट, और इस तरह का मैच हम जीतने का कोशिश करेंगे, नॉट अबाउट रन रेट्स,
0: नॉट अबाउट रन रेट्स। इट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एट दिस स्टेज ऑन द 21st, कर्नल, इट्स गोना बी द इंडियन बॉलर्स वर्सेस साउथ अफ्रीकन बैटर्स, और डू यू थिंक द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स वर्सेस द इंडियन बैटर्स, व्हाट डू यू थिंक विल बी द बिगर बैटल ऑन दैट डे?
4: आई थिंक द बिगर बैटल वुड बी द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स वर्सेस द इंडियन बैटर्स, and I hope we do well, okay, and score over 150 and put them under pressure with our spinners.
3: और हमने देखा है कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी में काप, जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि बल्ले से योगदान आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है साउथ अफ्रीका को।
2: गेंदबाजी की बात करूं तो उसमें कहीं ना साउथ अफ्रीका का जो हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे अगर देखा जाए तो फील्डिंग ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों साइड के बैटर बहुत अच्छे हैं, एंड स्पिनर एंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत काफ़ी है, बट यहां पे डिफरेंस होगा सिर्फ आपकी फील्डिंग को लेकर, कि आप कैचेस को कैसे ग्रैब कर रहे हैं, आप फोर जहाँ पे आप फोर को स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पे आप 2 runs दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है फील्डिंग के अंदर। एंड साउथ अफ्रीका टीम के साथ हमें यही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रन्स जितने कम से कम दे सकते हैं उनको, वो तभी आप आगे जीत के लिए जा सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक चीज़ और ये कहूँगी कि जैसे आज नंदिनी शर्मा ने बॉल डाली, आउटस्टैंडिंग बॉल डाली, बट उसके साथ अगर हम उन दोनों

0: के फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर देखे तो वहां पर कहीं ना कहीं लेग साइड पे बॉल जा रही थी एंड वो हमें इम्प्रूव करनी है. जीत, जब जीत हमें मिलती है तो हम गलतियां भूल जाते हैं, बट गलतियों को देख के अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो कहीं वो हमें नेक्स्ट मैच के लिए विन दे सकती है.
1: इंडीड. और नंदिनी शर्मा की आपने जब बात की तो कीपर ऋचा घोष उनके लिए आगे खड़े हुए थे क्योंकि बल्लेबाज चहलकदमी करने पर उतर आए थे ताकि झूलती हुई गेंद को बेहतर संभाल सकें. क्या आगे जाते हुए भी हम इन कंडीशंस में इसी पैतरे को आजमाते हुए देखेंगे ऋचा घोष स्टैंडिंग अप?
0: जी बिल्कुल. ऋचा घोष, मैंने हमेशा बोलती हूँ, इंडियन टीम के लिए बेस्ट है एंड उनकी बैटिंग ही नहीं, उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है क्योंकि वो कहीं भी लेग साइड हो या ऑफ साइड हो वो हर जगह पे आपको डाइव लगाती हुई नजर भी आएंगी एंड वो जिस तरह से अपना माइंड सेट रखती हैं उस तरीके से वो बॉल भी डलवाती हैं बॉलर्स को. वो इशारे से जो एक इशारा देते हैं हम विकेट कीपिंग की जगह पे खड़े होके, वो बॉलर को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर एज एक टीम के लिए कीपर बैकबोन होता है क्योंकि वो एक कीपर वहाँ पिच पे खड़े होके पूरी फील्ड सेट कर सकता है और सबको देख सकता है. उसके लिए वो सबसे ईजी पॉइंट है वहाँ पे खड़े होके चेक करना.
1: All in all, a great win for the Indian side, and now they'll be putting their feet up and watching Pakistan take on the South African bowlers, especially so that they are better prepared and they do their homework for the next game on the 21st. Megha?
2: Absolutely. Indian team would now turn its attention on making all the notes. वैशाली यूज द वर्ड इशारा, हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा आ गया है इसी बात पे कि इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि 21 जून को हम वापस आएंगे. सुहास, आपका धन्यवाद, हमारे विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद. और इस प्रोडक्शन की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर शहनवाज खान ने उठाई और प्रोडक्शन टीम में इंजीनियर्स हैं मनोज, अजय राणा और आर यादव, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं तन्मय पंत, अमीशा पटेल और कविता. और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का यहाँ पर समापन करेंगे, वापस लौटेंगे 21 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के साथ. जुड़ते हैं आपके साथ शाम 6:30 बजे.
3: प्लेयर ऑफ द मैच.
4: अभी आप आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.

अभी आप सुन रहे थे आंखों देखा हाल, आईसीसी विमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड के मध्य हेडिंग्ले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण, जिसे प्रसारित किया जा रहा था हमारे दिल्ली केंद्र से आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर रात्रि के 10:54 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत।

0: ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
3: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारु चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः है 5:51 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।